0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: क्या क्यों? अब नहीं जाके।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए अभी सुनते हैं आज का पहला फ्लैश। आपसे अभी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री दफ्तर की चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के सलाहकार श्री राकेश बकोगी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंचे। मामला क्या है? सोशल मीडिया पर पब्लिक स्टेटमेंट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। इन स्क्रीनशॉट में ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस मामले में फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के एक अधिकारी को निर्देश दिए थे। इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी शामिल हैं उनसे पूछताछ हुई या होने वाली है। राकेश बकोगी का क्या कहना है? इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोगी काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया है और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट को पीछे के पीछे किसका हाथ है इसकी पूरी जांच की जाए। पॉल बेरांजी ने कल सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटन प्रोग्रेसिस यानी कि FMP की सेंट्रल कमेटी की एक बैठक के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री ने प्रेस को बुलाया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। पॉल बेरांजी ने इस

0: अतः पर कड़ी नाराजगी जताई कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए हैं। उनका ये भी कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया। NLTA ने याद दिलाया है कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की गई आधिकारिक दर तय नहीं है, इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर लें। इसके साथ ही NLTA ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के कल्याण में सही और उचित किराया ही ले। और विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, उत्तर की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर उत्तर पूर्व और सेंट्रल प्रांतों पर। शाम तथा आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:42 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर। तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। 6:30 आप विस्तार के साथ प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुप्रभात। भोर की बेला कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप जहां भी होंगे खुश होंगे, यही हमारी उम्मीद है। आज रविवार 26 जुलाई 2026 की इस भोर की बेला कार्यक्रम में आपका हम दिल की गहराई से स्वागत करते हुए यही आशा करते हैं कि आज की ये सुबह आपके लिए मंगलकारी रहे। सुबह की ये शांति आपके मन को छूकर उसमें वास करे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आज का दिन आपका बहुत ही मंगलमय रहे। सुबह की इस बेला में 6:06 हुए हैं। चलिए सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति यद्विदुस्तैमे समासते। आर्यसभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र की व्याख्या प्रस्तुता प्रोफेसर डॉक्टर

रमींद्र शास्त्री, प्रिय श्रोताओं, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 164वां सूक्त और 39वां मंत्र है। इस मंत्र के अंदर बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान हम सब मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए दिया है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वेद मंत्रों को पढ़ करके ईश्वर के स्वरूप को ठीक से समझा जा सके, जीवात्मा के स्वरूप को ठीक से समझा जा सके, प्रकृति को अच्छी तरह से समझा जा सके, हमारा जीवन क्या है, राष्ट्र क्या है, परिवार क्या है, हमें कैसा रहना है आपस में, इन सब बातों की जानकारी हमें इस वेद मंत्र के माध्यम से मिलती है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है, ऋचः। ऋचः कहते हैं वेद की ऋचाओं को, अर्थात वेद के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को ऋच कहा गया है। ऋच्यते स्तूयते अनया सारिक, अर्थात वेद मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो वेद के मंत्र हैं, ऋच ऋचौ ऋचः बहुवचन में प्रयोग किया गया है, ये कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं अक्षरे परमे व्योमन। अक्षर का अर्थ है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, न क्षीयते इति अक्षरम, अर्थात अविनाशी परम आकाश सम व्यापक परमेश्वर में ये ऋचाएँ रहती हैं। अर्थात वेद का जो ज्ञान है वो परमात्मा के भीतर ओतप्रोत है। परमात्मा ज्ञानमय है, सर्वदा ज्ञानमय है, इसलिए वेद के मंत्र सब प्रकार का ज्ञान उसी से प्रवाहित होता है। तो ये बात यहाँ पर कही और ईश्वर को अविनाशी कहा, परम उत्कृष्ट कहा। एक बात और इसके अंदर कही गई है, परमे व्योमन। कैसा है वो अक्षर स्वरूप परमात्मा? तो कहते हैं आकाशवत व्यापक है। जैसे आकाश सब जगह विद्यमान है, ऐसे ही परमात्मा भी सब जगह विद्यमान है और परमात्मा का जो ज्ञान है वो उसके अंदर विद्यमान है। तो एक बात पहली यही कही गई है कि वेद का जो ज्ञान है वो परमात्मा के भीतर रहता है, चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय काल हो, उसमें सारा ज्ञान ओतप्रोत है। इसीलिए कहा कि परमे व्योमन ऋचः, अर्थात परम व्योम परमात्मा में जो आकाश के समान विद्यमान है उसमें हमारा सारा वेद का ज्ञान परमेश्वर में विद्यमान रहता है। दूसरी बात इस वेद मंत्र में कही गई है, बड़ी सुंदर बात है, यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः, जिसमें समस्त जो तेज मंडल सूर्यादि जो देव है एवं ज्ञानी विद्वान, ये सारे के सारे उसी से आश्रय पाते हैं। अर्थात दुनिया का ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उससे आश्रय नहीं पाता हो, सब कुछ उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। हमारा जीवन, पशु पक्षी, संसार के अंदर के जितने पदार्थ हैं वो सारे उसके अंदर, निषेधु का मतलब है बैठ रहे हैं, आश्रय पा रहे हैं, आलंबन पा रहे हैं। और यहाँ पर तीसरी बात कही, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो उसको नहीं जानता, ऐसे अक्षर स्वरूप परमात्मा को जो नहीं जानता, ऋचा किम करिष्यति, वेद के मंत्र क्या करेंगे? अर्थात आपने, हमने सबने वेद मंत्र पढ़ लिए और हमें अक्षर अविनाशी स्वरूप ईश्वर का, परब्रह्म का हमें परिभाषा नहीं पता, कैसा है क्या है, तो केवल वेद पाठ करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हमें जो जो मंत्र हम पढ़ते हैं उन मंत्रों का जो भाव है, मीनिंग है, वो भी हमें समझना चाहिए। केवल मात्र तोता रटन से कोई बात नहीं बनने वाली है। यहाँ पर यही बात कहते हैं, यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, जो उस अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानता, तो ऋग्वेद की ऋचाएँ क्या करेगी, सामवेद की, अथर्ववेद की, यजुर्वेद की, मंत्र हम सारे पढ़ जाएंगे, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। और चौथी बात इस मंत्र में ऋग्वेद के बहुत सुंदर बात कही है, य इत तद विदुस्त इमे समासते,

उस परब्रह्म को जानते हैं वे ही सम्यक स्थिर हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, प्रभु में सदा विभोर हो जाते हैं। इसलिए ऋचाओं का, वेद मंत्रों का जो वास्तविक उद्देश्य है, उसको कभी अपनी आँखों से हमें ओझल नहीं करना चाहिए। हमें ऋचाओं के, वेद मंत्रों के अध्ययन का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, और अंतिम हमारा जो उद्देश्य है उसका हम साक्षात करें, उस प्राणप्रिय परमेश्वर का साक्षात अनुभव करें। क्योंकि जो उसे जान लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं, वे ही उसमें आनंद को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्यारा मंत्र है। हम वेद आदि शास्त्रों को अवश्य पढ़ें, पर पढ़ करके ईश्वर के स्वरूप को हम जानें, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो अक्षर है, अविनाशी है। जैसा कि हम आर्य समाज के दूसरे नियम में पढ़ते हैं, ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। ऐसे उस परमात्मा को जानने का हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। इस वेद मंत्र में एक बात सुंदर कही गई है कि ये वेद का जो ज्ञान है, पुस्तक में जो बंधा हुआ है, प्रलय काल में क्या नष्ट नहीं हो जाएगा? तो फिर वेद का ज्ञान एटर्नल नित्य कैसे हुआ? तो यहाँ तो कहा गया है कि परम व्योम में वो रहता है, तो परम व्योम में कैसे रहता है, ये भी हमें एक बात समझनी चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने इसके इस प्रश्न का समाधान बहुत अच्छी तरह से किया है। वे कहते हैं कि प्रलय कालेपि परमात्मनि वेद ज्ञान राशि संस्थितो वर्तते, अर्थात प्रलय काल में भी वेद का ज्ञान नष्ट नहीं होता। ऋचाओं का ज्ञान, ऋचाएँ, वेद मंत्र कभी भी नष्ट नहीं होते। प्रलय काल में जैसे परमात्मा की सत्ता है, हम सब जीवों की भी सत्ता है, तो कहते हैं कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो प्रलय काल में भी उसके अंदर रहता है। और जब सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो परमात्मा फिर से हमें ये वेद का ज्ञान देते हैं। तो पुस्तक के रूप में तो ये ज्ञान नष्ट हो सकता है, अर्थात पुस्तकें समाप्त हो सकती है, परंतु जो ईश्वर का ज्ञान है, वह परमात्मा जो आकाशवत व्यापक है, उसके भीतर सर्वदा विद्यमान रहता है। आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो उसके भीतर समाहित रहता है। क्या हम उस व्यक्ति के अंदर से उस ज्ञान को अलग कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं बाहर? नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे ही गुण और गुणी का संबंध होता है, नाम और नामी का संबंध होता है। ईश्वर का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है, उसके लिए वो ऐसे ही ज्ञान हमें प्रदान करता है जैसे हम श्वास लेते हैं ना, ऐसे ही सहजतया ये वेद का ज्ञान सृष्टि के आदि में हमारे चार ऋषियों को मिलता है, जिसको हम कहते हैं अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का ज्ञान, वायु ऋषि को यजुर्वेद का ज्ञान, और आदित्य को सामवेद का ज्ञान, और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान। यह सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए प्रदान किया है। तो इस वेद मंत्र में समझने वाली बात यह है कि जो परमात्मा का ज्ञान है वेद का, वो स्वाभाविक है, नित्य है, और जैसे परमात्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, एटर्नल है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, उसी प्रकार से उनका ज्ञान भी। इसीलिए कहा गया है ना, सनातनम एनम आहु। जैसे परमात्मा को सनातन कहते हैं, सदा से चला आ रहा है, ऐसे ही वेद का ज्ञान भी परमात्मा के भीतर विद्यमान है, वह उससे अलग नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अनेक प्रकार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो हमसे अलग नहीं होता, ऐसे ही ईश्वर का जो ज्ञान है, उसका नित्य संबंध है, वह उससे कभी अलग नहीं होता। हम सबका उद्देश्य अब क्या होना चाहिए, ये हमने सब जान लिया। तो भगवान कहते हैं कि देखो, वेद के मंत्रों को तुम पढ़ते हो, जानते हो,

0: लेकिन यदि ईश्वर के स्वरूप को, भगवान के स्वरूप को नहीं जाना, तो फिर वेद मंत्र क्या करेंगे। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उन ऋचाओं का ज्ञान प्राप्त करें। वेद मंत्रों का जो वास्तविक उद्देश्य है वह हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर कही है कि ये वेद आदि का जो ज्ञान है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, वो कहाँ विद्यमान है, तो कहते हैं अक्षर परमे व्योमन। यहाँ दो विशेषण बड़े सुंदर हैं ऋचाओं के लिए आए कि वो ऋचाएँ वेद मंत्र कहाँ रहते हैं, तो वेद मंत्र में रहते हैं। अक्षर का मतलब भी है परमात्मा अविनाशी है, इसलिए इस वेद मंत्र के भाव को हमें समझना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोताओं, बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी,
2: और आज आप सुन रहे थे प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी को।
3: NBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।
2: इस समय 6:18 हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से ये विज्ञप्ति सुनिएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाकवा के निवासियों को सूचित करता है कि ओलेहुद नंबर 1, हुद कैंस कौतों नंबर 2 के एक भाग में, हुद डिवेक के एक भाग में और रुत लामारी के एक भाग में, रुत बैग, रुत बनफें, शमे रिजर्वा, डूडी लेन, शमेला सोस, मुतू लेन और आसपास के इलाकों में आज रविवार 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इस मरम्मत कार्य के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने इन ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 6:19 हुए हैं। चलिए जरा सुबह की इस बेला में हम ऊपर वाले को 100-100 धन्यवाद देते हैं। ये सुबह हमें देखने को मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हर किसी के जीवन में ऐसी शांत सुबह रहे और ऐसी रोशन सुबह रहे। सुबह का ये सफ़र हर किसी के लिए बहुत मंगलमय रहे।

ऐ ऊपर वाले, आप हर किसी के जीवन में खुशियां भर दीजिए, हर किसी के मन में हौसला भर दीजिए, हर हाल में खुश रहने का जज्बा भर दीजिए। चलिए ज़रा हम बढ़ते हैं और डोर मूवी का ये गाना सुनते हैं। डोर मूवी के गाने को सुनते सुनते हम बढ़ जाएंगे 6:30 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर, और समाचार बुलेटिन लेकर आएंगे अभी उदय।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 26 जुलाई 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की ही है बढ़ोतरी। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से रखा गया है बाहर। इसका मतलब ये है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप के हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। और विदेश में रूस के कब्जे वाली यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या इलाके में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोगों की हो गई है मौत और 14 लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थानीय खबरों के साथ और इन सुर्खियों को देते हैं विस्तार। प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन रामगुलाम के सलाहकार राकेश बकोरी कल रात शिकायत दर्ज कराने सीसीआईडी पहुंची। सोशल मीडिया पर पब्लिक स्टेटमेंट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। इन स्क्रीनशॉट में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने मेयर कैंटाइल मैरिटाइम ग्रुप मामले में फाइनेंशियल क्राइम कमीशन के एक अधिकारी के निर्देश दिए थे। इस मामले में एमएसएम के कई पूर्व मंत्रियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ भी शामिल हैं, उन

0: से पूछताछ हुई या फिर पूछताछ होने वाली है। इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोगी काफी दुखी है। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया है और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट से पीछे किसका हाथ है इसकी पूरी जांच की जाए। पॉल बेरांजे ने कल सरकार के खिलाफ करा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट यानी कि FMP की सेंट्रल कमिटी की बैठक के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। ये दो विधेयक हैं फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजन्स बिल। दूसरे विधेयक के जरिए लगभग 58 कानूनों में बदलाव करने की तैयारी है। पॉल बेरांजे ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए। उनका यह भी कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। इससे किसी भी पक्ष को इन्हें पढ़ने और समझने का मौका ही नहीं मिलता है। FMP नेता के अनुसार सरकार का यह तरीका लोकतांत्रिक बहस और आपसी सलाह मशवरे का पूरी तरह से अपमान है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया। NLTA ने याद दिलाया कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की गई कि कोई आधिकारिक दर तय नहीं है। इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर ले। इसके साथ ही NLTA ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के कल्याण में सही और उचित किराया ही ले। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्माण मूल्य सूचकांक यानी कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के चेयरमैन देवेन दालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बाहर से मंगाए गए सामानों की कीमत, फ्रेट मैरिटाइम का महंगा होना और सीमेंट जैसी स्थानीय चीजों के दामों में उछाल आना है। हालांकि इस महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। बड़े निर्माण ठेकेदारों यानी कि कंट्रैक्टर्स को कभी कभी उनके कंट्रैक्ट में मौजूद एडजस्टमेंट क्लोज के जरिए सुरक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को बढ़ी हुई कीमतों और टैक्स का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। इस शुक्रवार से मॉरिशस में अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि मॉरिशस के निर्यातकों को AGOA यानी कि अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। सूट कपड़े बनाने वाली कंपनी वेंसम लिमिटेड के निदेशक अविनाश गुबर्धन के अनुसार यह निर्यात सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उनका यह भी कहना है कि ये सफलता सरकार द्वारा मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर की गई लंबे समय की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हमारी सहयोगी राजमिला सीतामुनि ने उनसे बात की, विवरण टीना बुदना का।
1: इसका मतलब ये है कि हमारे पास सभी उत्पाद फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले AGOA के तहत थे, यानी हमारे उत्पाद US में बिना किसी ड्यूटी या टैरिफ के प्रवेश कर सकेंगे। पहले 20% टैरिफ लगाया गया था, फिर उसे 15% और उसके बाद 10% कर दिया गया। इसलिए ये एक अच्छी खबर है कि अब टैरिफ के मामले में बाजार तक पहुँच आसान हो गई है। अब हम AGOA के नवीनीकरण और और द्विपक्षीय ट्रीटी का इंतजार कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अब देखना होगा कि अगवा से क्या परिणाम निकलता है। जब द्विपक्ष

0: क्षेत्र का समझौता अंतिम रूप ले लेगा, तब हम ये तय कर पाएंगे कि बाजार तक सबसे बेहतर तरीके से कैसे पहुंचा जाए। साथ ही खरीदारों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी क्योंकि उन्हें बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी।
1: Une fois que ça s'est finalisé, on va pouvoir développer une stratégie à long terme, comment on approche le marché, acheter aussi pour prix intéressé, si on a une visibilité.
2: घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। यह परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। इसके तहत 3,600 परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। ऊर्जा मंत्री पत्रिक आसियावादेन ने कहा कि इस पहल से कोयले और पेट्रोलियम पैदावारों के आयात में कमी आएगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे पहले सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डीबीएम में आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। गीता सुनारायण की रिपोर्ट।
3: हाउसहोल्ड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक योजना, जिसकी औपचारिक लॉन्चिंग क्यूपिप में की गई, 3,600 परिवारों को लाभान्वित करेगी। इस सहायता योजना के तहत घरों की छतों पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% तक की सब्सिडी, अधिकतम 75,000 प्रति परिवार प्रदान की जाएगी। ये परियोजना सीबी, डीबीएम और वित्त मंत्रालय के संयुक्त सहयोग से लागू की जा रही है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरे कहते हैं,
4: l'eau ou toit, la case, y amène la croissance. Prenant à peu près 400 mégawatts d'énergie renouvelable, l'investissement dedans.
3: घर की छत पर हर एक सोलर पैनल वृद्धि लाती है। करीब 400 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निवेश इसमें किया जाएगा। करीब 41 बिलियन रुपए का निवेश। इसके सफल होने पर खरीद शक्ति बेहतर होगी, नौकरी पैदा होगी, शिक्षा में संसाधन मिलेंगे, स्वास्थ्य में भी और समाज सुरक्षा में भी। मंत्री पत्रिका आसियावादेन ने ऊर्जा आपूर्ति मजबूत करने के लिए कई कदमों पर बात की। सप्ताह के दौरान चीनी सरकार के साथ 1 बिलियन रुपए की संधि पर हस्ताक्षर करेंगे ताकि और बैटरी खरीद सके, इसलिए ये परियोजनाएं शुरू की हैं। 2026 में हमें जमीन का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा की परियोजनाओं को जानना चाहिए। जमीन नहीं होगी तो परियोजनाएं नहीं होंगी। ये एग्रीवोल्टाइक परियोजना कृषि जमीन और सोलर पैनल का मिलन है, इसलिए प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या सुधार ला सकते हैं, कानून में क्या बदलाव ला सकते हैं, ताकि ये परियोजनाएं 1.5-2 साल में नेटवर्क में शामिल हो। हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक योजना के लिए पात्रता का मुख्य मानदंड है कि परिवार की मासिक आय 1,50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों को सबसे पहले सीबी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद उन्हें डीबीएम से संपर्क करना होगा ताकि वे अपने घर की छत पर सौर फोटोवोल्टाइक पैनल लगाने के लिए 25% सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकें।
2: इसके अलावा इस काम में रुचि रखने वाले सप्लायरों और इंस्टॉलरों को सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आधिकारिक बयान पर दिए गए क्यूआर कोड के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है। फिलहाल इंस्टॉलर्स की योग्यता के नियमों यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आम लोगों के लिए ये योजना कब शुरू होगी इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जारी नहीं की गई। बजट 2026-2027 में पेश होने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके। स्कूल की दूसरी तिमाही समाप्त

0: हो जाने पर अब सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। परीक्षाओं के बाद राहत की सांस, परिवार के साथ घूमना फिरना और तीसरी तिमाही की तैयारी के लिए पढ़ाई। मॉरिशस के परिवारों ने इस ब्रेक के लिए अपने प्लान साझा किए हैं। लोग शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और रेस्टोरेंट जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि समुद्र तट की सैर के लिए थोड़े बेहतर मौसम का इंतजार किया जा रहा है। टीना बुदना की रिपोर्ट।
1: कई हफ्तों की पढ़ाई और परीक्षाओं के बाद छात्रों ने ली राहत की सांस। कई विद्यार्थियों ने छुट्टियों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ घूमने फिरने की योजनाएं बना ली है। माता पिता भी खुश है कि परीक्षाओं की तैयारी का दबाव अब कम हो गया है। मैंने अपना ब्रेवे एक महीने पहले पूरा किया और अपने परिणामों से बहुत खुश था। अब मैं छुट्टियों में आनंद लेना चाहता हूँ और खुद पर भी ध्यान देना चाहता
2: हूँ।
1: मैं अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती हूँ, जैसे उसे बीच चले जाना और परिवार के साथ भोजन करना आदि। मैं अपनी माँ के साथ भी समय बिताऊंगा। मैं अपनी छुट्टियों में खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी परीक्षाओं के लिए बहुत मेहनत और रिवीजन किया था। लेकिन कुछ छात्रों के लिए ये छुट्टियां पूरी तरह आराम की नहीं होंगी। वे इस समय का उपयोग पढ़ाई और रिवीजन जारी रखने में करेंगे ताकि तीसरे टर्म और साल के अंत की परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी की जा सके। मेरा बेटा अभी ग्रेड 11 में है। मैं उसके साथ थोड़ा रिवीजन करके समय बिताना चाहती हूँ क्योंकि पढ़ाई जारी रखना भी बहुत जरूरी है। मेरी बच्ची पिसाक कर रही है। छुट्टियों में हम छोटी छोटी आउटिंग्स भी करेंगे, जैसे मेबर्ग म्यूजियम, डच लैंडिंग स्टेशन आदि जगहों पर जाना। मनोरंजन की बात करें तो सर्दियों के मौसम में परिवार नजदीकी गतिविधियों को पसंद कर रहे हैं, जैसे मॉल्स, सिनेमा और रेस्टोरेंट्स उनकी पहली पसंद में शामिल है। कई बच्चे इस ब्रेक का इस्तेमाल ज्यादा स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी करना चाहते हैं। वहीं दादा दादी और नाना नानी के लिए ये छुट्टियां परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका है। 6 पोते पोतियों की दादी जानिन बताती है कि इस दौरान उन्हें साथ में खाना बनाने, बाहर जाने और बच्चों के साथ यादगार पर बिताने का अवसर मिलता है, जो स्कूल के समय में हमेशा संभव नहीं हो पाता। मुझे खुशी और गर्व है कि मेरे पोते मेरे साथ समय बिताते हैं। हम साथ में छोटी छोटी आउटिंग्स करते हैं, अच्छे खाने का आनंद लेते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश करते
2: हैं।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मॉरिशस इस साल HIV एड्स पर 22वें हिंद महासागर संगोष्ठी की मेजबानी करेगा। हालांकि इसकी सटीक तारीख तय होना अभी बाकी है। हर 5 साल में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और HIV के खिलाफ संघर्ष में जुटे गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर लाएगा। कुमोरो और मेडागास्कर के बाद अब मॉरिशस इस नए संस्करण का मेजबान बनने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है HIV और यौन संचारित संक्रमणों के खिलाफ क्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करना, टिकाऊ वित्तीय सहायता जुटाना और HIV, हेपेटाइटिस तथा यौन व प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। इस आयोजन में लगभग 300 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। पाइल्स संस्था के संस्थापक निकोला रिची से आशी, हमारी सहयोगी आशी बाचू की यह बातचीत सुनते हैं। तफसील के साथ सुमहरा अकबर अली।
3: Nous avons une population qui migre, qui bouge dans l'océan Indien et donc
4: हमारी जनताएं एक जगह नहीं रहती, बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जो वायरस के फैलाव को और मुमकिन बनाते हैं। एचआईवी एड्स का भी आसानी से फैलाव होता है। इलाके में ड्रग तस्करी के माध्यम भी बढ़ गए हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस पर जोर नहीं देते थे क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र की महामारी

0: छोटी लगती थी, खासतौर पर अफ्रीकी महाद्वीप के मुकाबले, लेकिन अब फिनेंसिंग के लिए बातचीत कर रहे हैं।
1: Était ignoré des grands bailleurs internationaux parce que notre épidémie est considérée petite ou faible par rapport au continent africain qui, où là, il y a des prévalences qui sont beaucoup plus importantes.
2: और विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। उधर इंडोनेशिया में स्पीड बोट के डूबने के बाद लापता लोगों में से 12 लोगों को बचाया गया है। इनमें 11 यूरोपीय पर्यटक और एक स्थानीय क्रू मेंबर शामिल हैं। अब भी बोट के कप्तान की तलाशी की जा रही है और इस प्रांत के खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख ने बताया कि शुक्रवार सुबह सेंट्रल सुलावेसी प्रांत की तोजो उनानुना रेजेंसी के एक डाइव रिजोर्ट से इस प्रकार के एक स्पीड बोट उस पोर्ट के लिए निकली थी, लेकिन तय समय पर नहीं पहुंची है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, उत्तर की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह व दिन के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, खासकर उत्तर पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर। शाम और आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, हवा उत्तर की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगुनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:42 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:50 पर।

चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की ही है बढ़ोतरी। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से रखा गया है बाहर। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से है कम। और विदेश में रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोगों की हो गई है मौत और 14 लोग हो गए हैं घायल। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

तागोरोद घोंगुब में, तागोरोद घोंगुब में 88 साल की, 88 years old की श्रीमती असमुन तिलकचन, श्रीमती असमुन तिलकचन, पैदाइशी नाम गुगा, और जिन्हें सब लोग कृष्णवंती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे, आज दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री आरिदत्त तिलकचन के घर तागोर रोड घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए घोंगुब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में, एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में 91 साल की, 91 years old की श्रीमती मीरा अपाजी, श्रीमती मीरा अपाजी, पैदाइशी नाम गनू, और जिन्हें सब लोग मीरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्रीमती शोभा सुनू के घर एवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मारीजानी रोजबेल में, मारीजानी रोजबेल में 69 साल की, 69 years old की श्री रूप नारायण रिदोई, श्री रूप नारायण रिदोई, जिन्हें सब लोग सुरुज के नाम से भी जानते थे, और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे, आज दिन की 11 बजे उन्हीं के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। कारोलालियान वाकवा में, कारोलालियान वाकवा में 65 साल की, 65 years old की श्रीमती दनमौती लकमा, श्रीमती दनमौती लकमा, पैदाइशी नाम रसोकल, और जिन्हें सब लोग नालिनी के नाम से भी जानते थे, और जो LTC के पूर्व कर्मचारी थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री लखमा सिवचन के घर कारोलालियान वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 43 इंपास रॉबर्टसन बुबासेम, नंबर 43 इंपास रॉबर्टसन बुबासेम, 71 साल के, 71 years old के श्री महेश गोबिंद सिंह, श्री महेश गोबिंद सिंह, जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घर नंबर 43 इंपास रॉबर्टसन बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। मुजलॉ लेन रोजबेल में, मुजलॉ लेन रोजबेल में 78 साल की, 78 years old की श्रीमती कुलवंती रामफल, श्रीमती कुलवंती रामफल, पैदाइशी नाम राम सराम, और जिन्हें सब लोग सुदेवी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री जगेश्वर रामफल के घर मुजलॉ लेन रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स में, जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स में 87 साल के, 87 years old के श्री सुंदत कुनाई, श्री सुंदत कुनाई, जिन्हें सब लोग कुनाई के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे, आज दिन के 1:30 बजे उन्हीं के घर जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। मार्केट रोड मोताइलोंग में, मार्केट रोड मोताइलोंग में 66 साल की, 66 years old की श्रीमती इंदिरा पम्मा,
श्रीमती इंदिरा पम्मा पैदाइशी नाम बिकारी और जिन्हें सब लोग इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी

अर्थी आज दोपहर के 2 बजे उनके पति श्री रविनाथ पम्मा के घर मार्केट रोड मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खेवक्या की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारोलिन रोड वैली दे प्रेत में, कारोलिन रोड वैली दे प्रेत में 88 साल की 88 years old की श्रीमती सावित्री कोनाई, श्रीमती सावित्री कोनाई पैदाशी नाम पलवान और जिन्हें सब लोग कुमारी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री सूरज कोनाई के घर कारोलिन रोड वैली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड बुबा समय 75 साल के 75 years old के डॉक्टर विनोद बालगोबिन की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के चार बजे लाशापेल ऑनदॉद एलियनसॉन्स रॉयल रोड बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंडव्य की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 4। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस में सुबह के ठीक 7 बजे हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। मॉरिशस का तैराक बादले वैंसों फाइनल में पहुंच नहीं पाया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के 50 मीटर फ्री स्टाइल सेमीफाइनल में वो कल रात केवल छठा स्थान ले पाया 22:68 में। इस प्रकार बादले वैंसों फाइनल में नहीं है। अब आज इन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में दिन के 1:30 बजे से अलीशा कोक्शुन और हंस ली यिंगपिन हीट्स में, स्विमिंग के हीट्स में भाग लेंगे। बॉक्सिंग में भी हमारे 3 मुक्केबाज आज दिन के दौरान रिंग पे उतर रहे हैं। तो वेटलिफ्टिंग के हमारे प्रतिनिधि मंगलवार से प्रतियोगिता में उतर रहे हैं। लड़कों में दिनेश पांडू और लड़कियों में केचिल्लों मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेंगे। सो ये राष्ट्रमंडल खेल अभी जारी है ग्लासगो में। और जहां तक मेडल टेबल का सवाल है तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 12 स्वर्ण पदक जीते हैं। वो पहले स्थान पर हैं, काफ़ी दूर है बाकी सब टीमों से। ऑस्ट्रेलिया 12 स्वर्ण पदक, इंग्लैंड के पास 3 स्वर्ण पदक, नाइजीरिया ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। स्कॉटलैंड, मेज़बान देश स्कॉटलैंड, अभी 4थे स्थान पर हैं 2 स्वर्ण पदकों के साथ। भारतीय टीम ने कल शॉटपुट में 1 गोल्ड मेडल हासिल किया और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी उनके पास है। सो राष्ट्रमंडल खेल जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिवरपूल अपना पहला फ्रेंडली मैच जीत गया। कल उसने संडरलैंड को 4-2 से परास्त किया। नए कोच अंडोनी इराउला के अंदर ये उनका पहला मैच था और 4-2 से जीत हुई। किएसा और जुबोसलाई का 1-1 गोल, बाकी 2 नए खिलाड़ियों ने स्कोर किए। सो लिवरपूल की यात्रा जारी है। अब आने वाले दिनों में और कुछ फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे। जहां तक ट्रांसफर बाजार का

सवाल हैं तो खबर ये है कि वर्दे का गोलकीपर 40 वर्षीय गोलकीपर वोजिनिया अब चिली फुटबॉल क्लब में खेलने जा रहा है। चिली ने वोजिनिया को कुलुकुलु क्लब ने वोजिनिया को एक कंट्रैक्ट दिया है जो शुरुआत में 6 महीनों के लिए था, अब उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आने वाले घंटों में वोजिनिया एक कंट्रैक्ट साइन करेगा जिससे वो चिली क्लब कुलुकुलु के लिए खेल पाए। टोटनहम हॉटस्पर का कोच रॉबर्टो डे ज़ेरबी काफ़ी नाखुश है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी क्लब में खुश नहीं है वो छोड़कर जा सकता है। अभी एक स्वीडन का मिडफील्डर वो जाने वाला है नॉटिंगम फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट ने सबसे पहले उसके लिए 38 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव भेजा और बाद में 45 मिलियन पाउंड। ऐसा मालूम पड़ता है कि अब वो टोटनहम हॉटस्पर से को छोड़कर चला जाएगा नॉटिंगम फॉरेस्ट में। समविल क्रिसेंशो चला गया है अल हिलाल में। 55 मिलियन पाउंड में ये सौदा तय हुआ है। वेस्ट हैम यूनाइटेड का ये 24 वर्षीय विंगर, उसको लेकर कई बातें चल रही थी, कई बड़े बड़े क्लब उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन 55 मिलियन पाउंड में क्रिसेंशो समविल वेस्ट हैम यूनाइटेड और होलैंड से चला गया है सऊदी अरब लीग अल हिलाल में। और खबर ये भी है कि क्रिस्टल पैलेस का सेंटर बैक मैक्सेंस लाक्वा चेल्सी का होने वाला है 52 मिलियन पाउंड में। चेल्सी ने अभी एस्टन विला के मोगन रोजर्स को 117 मिलियन पाउंड में साइन किया था, अब मैक्सेंस लाक्वा भी चला गया है 52 मिलियन पाउंड में। जहां तक आर्सेनल का सवाल है तो खबर ये है कि वो न्यूकासल यूनाइटेड के ब्राज़ीलियन मिडफील्डर ब्रूनो गुमारेस के लिए 70 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव भेजने जा रहा है। और विनीशियस जूनियर भी अभी रियल मैड्रिड को छोड़कर जा सकता है। आर्सेनल उसके पीछे भी पड़ा हुआ है, यदि वो बिकाऊ है तो वो उसे हासिल करना चाहेगा। और रियल मैड्रिड ने ये भी कह दिया कि रोड्री को वो हासिल करना चाहता है, हालांकि रोड्री चोटिल अवस्था में है। कल सोमवार को उसकी सर्जरी होनी है और उसके नए कोच मारेस्का ने कह दिया कि रोड्री बिकाऊ नहीं है, फिर भी रियल मैड्रिड उसे हासिल करना चाहता है। और यान जोमांडे आइवरी कोस्ट का ये हॉट प्रॉपर्टी पेरिस सेंट जर्मेन में शायद न जाए, अब वो रियल मैड्रिड में खुद जाना चाहता है। रियल मैड्रिड ने उसके लिए 100 मिलियन पाउंड का प्रस्ताव, मिलियन यूरो का प्रस्ताव भेजा है। सो यान जोमांडे अब लिवरपूल को छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन से होते होते रियल मैड्रिड में जाने की कगार पे है। और जहाँ तक कोचिंग का सवाल है तो यदि पेप गार्डियोला ने इटालियन फुटबॉल फेडरेशन का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो कार्लो एंसेलोटी भी ब्राज़ील के साथ ही रहना चाहता है। और इस प्रकार तीसरा कोच एंड्रिया पियलो अब इटालियन हेड कोच बन सकता है। 2030 तक वो इटली को वर्ल्ड कप में लाने का चैलेंज की चुनौती ले रहा है। सो फुटबॉल में बहुत कुछ हो रहा है, बता दें कि और सारे साइनिंग हो रही है। इप्स्विच टाउन जो अभी फिर से वापस आई है प्रीमियर लीग में, उसने जापान के फॉरवर्ड डाइजेन माइडा को 10 मिलियन पाउंड में सेल्टिक से 3 साल के कंट्रैक्ट पर साइन कर लिया है। 10 मिलियन पाउंड की रिपोर्टेड फी ये डील बताया जा रहा है। और बता दें कि माइडा जो है वर्ल्ड कप में अभी था जापान के साथ, उसने सेल्टिक में बिताए 5 सीजन्स में 212 मैचों में 79 गोल स्कोर किए हैं, जहां पर उसने 3 लीग टाइटल, 3 स्कॉटिश कप और 2 लीग कप भी जीते हैं। जहां तक फॉर्मूला 1 मोटो रेसिंग चैंपियनशिप का सवाल है तो आपको बता दें कि बेल्जियन ग्रां प्री के लिए कल लैंडो नोरिस ने ऐन मौके पे पोल पोजीशन हासिल कर लिया। लेविस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर आया। जनरल रैंकिंग में बता दें कि किमी एंटोनेली अभी तक शीर्ष स्थान पर है 204 अंकों के साथ। लेविस हैमिल्टन 159 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर है 154 पॉइंट्स के साथ। क्रिकेट में भारतीय टीम इंडिया की कल जीत हुई 90 रन से, वो जिम्बाब्वे को फिर हरा पाई। पहले मैच में 7 विकेट से जीत हुई थी, दूसरे में 90 रनों से, सो ये सीरीज टीम इंडिया जीत गई है। अब अगस्त महीने में एक नई सीरीज आरंभ होगी वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। और जहां तक स्थानीय
स्पोर्ट्स का।

0: खेल समाचारों का सवाल है तो क्षेत्रीय स्तर पर रोशनवा में दुदला बीमा सुविनियर कप के लिए आज शाम 3:30 बजे रोशनवा विलेज काउंसिल फुटबॉल मैदान पे एक पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें बेजुटोंबो फुटबॉल क्लब का मुकाबला एस्टन विला पेची राफ्रे से होगा। देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: कभी सोचा है
3: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशियंस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
5: दिल की बहार, सुबह का नजराना, Radio Mauritius पर।
6: रेडियो मॉरिशस पर आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस समय 7:10 हुए हैं, हमारा आपका साथ है और हम इस साथ में आपके लिए कुछ गाने लेकर आएंगे, कुछ प्यारी प्यारी बातें लेकर आएंगे, कम्युनिके लेकर आएंगे और लेकर आएंगे डॉक्टर माधुरी रामधारी जी की प्रस्तुति में आज का हमारा मंगल विचार कार्यक्रम। तो फिलहाल चलिए एक गाने से हम आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। अगर बारिश हो रही है आपके यहाँ तो चलिए ज़रा छम छम छम इस बारिश वाला गाना सुनिएगा, और नहीं भी हो रही है तो इस बारिश को ज़रूर महसूस कीजिएगा। बरसात लेकर आती है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एहसास जो हमारे मन को सुकून पैदा करते हैं। बस बारिश थम थम के आए, इतना आए कि जो हमसे हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी रहे।

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: इस समय 7:15 हैं। हम पढ़ते हैं कुछ विज्ञप्तियां आपके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लावेंचियर पेटिट रिट्रेट ग्रैंड रिट्रेट पोंट ब्लांक बोन अक्यूय बेलव्यू अलोंडी के निवासियों को सूचित करता है कि सोहातू पुल्ट्री एमटी लावेंचियर इस्कन बोन अक्यूय पोस्ट ऑफिस बोन अक्यूय तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 26 जुलाई को सुबह 8:30 से शाम के 5:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सेजिया मिल फॉरेस्ट साइट के निवासियों को सूचित करता है कि मोसेल मदुमा के एक भाग में मर्जी रोड के एक भाग में रॉयल रोड सेजिया मिल फॉरेस्ट साइट के एक भाग में और आसपास की गलियों में आज रविवार 26 जुलाई को सुबह 8:00 से दिन के 11:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सेजिया मिल फॉरेस्ट साइट के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसेल मदुमा तथा आसपास के इलाकों में आज रविवार 26 जुलाई को सुबह 10:00 से दिन के 1:00 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई सभी जगहों में जारी कर दी जाएगी। तो इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 7:17 हुए हैं।
2: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। ईमान न होना, बौद्धिक चेतना का मर जाना, नियत खराब होना, छल कपट करना या किसी को धोखा देना बेईमानी है। मनुष्य क्यों और कैसे बेईमानी करता है, आइए विचार करें। ईमानदार आदमी इस धरती का गौरव है, वह अपनी सच्चाई के कारण जाना जाता है। वैदिक ऋषि बताते हैं कि देवता मनुष्य के हर आचरण को देखते हैं और झूठा आचरण करने वालों को दंड देते हैं। अथर्ववेद कहता है, आमाम भद्रस्य लोके पापसन थेहय विहूतम, अर्थात वरुण देवता प्रहरी बनकर धरती पर घूमते हैं और गलत आचरण करने वालों को ढूंढ लेते हैं। संसार के लोग अनेक प्रकार से बेईमानी करते हैं। कोई दूसरों का हक छीनता है तो कोई रिश्वत लेता है, कोई दूध में पानी मिलाता है तो कोई व्यापार में हेरा फेरी करता है, कोई किसी से उधार लेकर नहीं लौटाता है तो कोई घटिया सामान को उत्तम बताकर बेचता है, कोई अपने सगे संबंधी या मित्र को धोखा देता है तो कोई देश के साथ द्रोह करता है, कोई खेल कूद के मैदान पर नियम तोड़ता है तो कोई अपने ही उसूलों के विपरीत चलता है। ऐसा लगता है कि बेईमानी का कोई अंत नहीं। जो व्यक्ति अपने दायित्व को सच्चाई और निष्ठा के साथ पूरा करता है उसी को ईमानदार कहते हैं। एक व्यक्ति किसी संस्था में डिप्यूटी डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुआ। इतने बड़े पद पर आकर भी वह काम करने से आनाकानी करता था। कोई न कोई बहाना बनाकर वह काम से जी चुराता था। उसके हिस्से का काम अन्य स्टाफ को करना पड़ता था। डिप्यूटी डायरेक्टर का दिमाग केवल इस दिशा में चलता था कि उसे अपने पद के अनुसार उचित पगार और अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं कि नहीं, और जितना वह कमा रहा है उससे भी ज्यादा वह कैसे प्राप्त कर सकता है। हर दिन यही सोचने पर वह बेचैन रहता था। सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति मेहनत किए बिना वेतन और सुविधाएं प्राप्त करता है उसे संतोष नहीं मिलता है, शांति के लिए वह तरसता रहता है। कुछ लोगों के लिए बेईमानी की कोई सीमा नहीं होती। एक व्यक्ति पूजा करने के लिए मंदिर में पहुंचा। पूजा के दौरान वह बगल में बैठे अपने एक मित्र के कानों में मंदिर के अधिकारियों की निंदा करने लगा। कुछ समय बाद पूजा में भाग लेने के लिए आए हुए दो राजनेताओं की भी वह निंदा करने लगा। जब पूजा समाप्त हुई तब वह मंदिर के अधिकारियों और वहां आए हुए दो राजनेताओं के पास गया, हाथ जोड़कर दोनों को नमस्ते की और उनका आदर करने का दिखावा किया। दूसरों के साथ दिखावे और बेईमानी का व्यवहार करने में वह सफल हुआ, पर क्या वह ईश्वर को धोखा देने में सफल हो सकता है? ईश्वर की आंखों से जब किसी की बेईमानी छिप नहीं सकती तब मनुष्य बेईमानी करता क्यों है? क्या ईमानदार होना इतना कठिन है? एक अध्यापक एक कॉलेज में पढ़ाने गया। उसे महीने के अंत में वेतन मिला। उसने अपने वेतन का आधा भाग लौटा दिया। यह देखकर उसके एक मित्र ने पूछा, क्या बात है,

0: ने अपना आधा वेतन लौटा क्यों दिया? अध्यापक ने उत्तर दिया, मैं इस कॉलेज में छात्रों को पढ़ाने आया हूँ। एक दिन में मुझे 8 घंटे पढ़ाने चाहिए, परंतु छात्र अक्सर कॉलेज नहीं आते हैं और मुझे लगता है कि 8 घंटे के बदले एक दिन में मैं केवल 4 घंटे ही पढ़ा पाया हूँ। इसीलिए अपने वेतन का आधा भाग मैंने कॉलेज को लौटा दिया है। श्रोताओं, इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग बसते हैं जो केवल ईमानदारी की ही कमाई खाते हैं। इन्हीं ईमानदार लोगों के बल पर यह धरती टिकी हुई है और ऐसे ही लोग आदर के योग्य होते हैं। आइए हम सब ईमानदार बनने की कोशिश करें, बेईमानी से बचें। चाहे धन हो या यश हो, सब ईमानदारी से कमाएं और शांति से जिएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: समय 7:24 हुए हैं। चलिए जरा गौर करें अपने मस्तक पर, क्या हम अपना मस्तक नहीं झुका सकते हैं? झुका सकते हैं, मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, आपकी ओर औरों का आदर बढ़ जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ अवश्य बढ़ जाएंगी, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर तो देखिए, स्वास्थ्य हमारा सुधर जाएगा। जीवा को थोड़ा आराम देकर देखिए, या फिर थोड़ा नियंत्रण देकर देखिए, अपनों के बीच जो कलेश होता है वो घट जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, प्यार अपनों के बीच में बढ़ जाएगा। अपनी इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, जिंदगी में खुशियाँ बढ़ जाएगी, सुख के पल बढ़ जाएंगे। बातों में कुछ गहराइयाँ होती हैं, उन गहराइयों में अगर हम डूब जाएं तो जीवन हमारा बहुत ही सुखमय बन जाए। चलिए ज़रा आप लोगों के लिए निकाह मूवी का ये गाना पेश करते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज़ सलमा आगा के साथ। चलिए मिला लेते हैं हम भी अपनी आवाज़, बहुत मज़ा आएगा।

इस समय 7:31 हुए हैं। चलिए हम जरा देखते हैं, छोटा सा डिटेल पढ़ते हैं, देते हैं आपको कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारी लिस्ट में है, हमारे प्रोग्राम में है आप लोगों के लिए रेडियो मॉरिशस पर, आपके चैनल पर। इनफैक्ट अभी तो हम पेश कर रहे हैं आपके लिए सुबह का नजराना, और सुबह का नजराना प्रोग्राम के बाद आप 8 सुन पाएंगे आज के भोजपुरी समाचार अभी की प्रस्तुति में, और उसके बाद आप लोगों के लिए हम लेकर आएंगे पैगाम आपके नाम। पैगाम आपके नाम कार्यक्रम में आप ज़रूर भाग लीजिएगा, आप अपने अपनों के नाम अपने पैगाम ज़रूर भेजिएगा। फिर 9 संक्षिप्त समाचार होंगे, उसके बाद मंगल आचरण कार्यक्रम होगा, और आज आधारित रहेगा मंगल आचरण कार्यक्रम आड़ी बेरुक्कु के अवसर पर, आरएसी पेश करेंगी तमिल भाषा में ये प्रोग्राम आज, और 10 आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। फिर उसके बाद होगा आज का उर्दू प्रोग्राम निसार की प्रस्तुति में, फिर लगभग 11 आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचारों के बाद आज का तमिल प्रोग्राम सुंदरम की प्रस्तुति में। राजेंद्र राज का तेलुगु प्रोग्राम लेकर आएंगे जो 12 होगा। 1 आप मराठी प्रोग्राम सीताबाई दरमिया की प्रस्तुति में सुन पाएंगे, और 2 चाइनीज प्रोग्राम जिन लेकर आएंगे। 6:30 होगा आज का गुजराती कार्यक्रम रत्ना की प्रस्तुति में, पूजा लेकर आएंगी आज का हमारा आप और हम कार्यक्रम 4:00, और 5 दोहर पसीन कार्यक्रम।

छः बजे होंगे संक्र समाचार, माफ कीजिएगा, होगा समाचार बुलेटिन, छः बजे होगा समाचार बुलेटिन, 6:30 बजे होगा आज का चाइनीज प्रोग्राम जिसे लेकर होंग होंग आने वाली है, और युवारा सेन लेकर आएंगे आज का तमिल प्रोग्राम 7 बजे, शाम के 7:30 बजे आप सुनिएगा आज का तेलुगु प्रोग्राम वंदना की प्रस्तुति में, शिरीष लेकर आएंगे आज का गीत गंगा प्रोग्राम मराठी भाषा में 7:50 पर, और 8:10 पर भजले प्रभु का नाम प्रोग्राम रोशनी लेकर आएंगी, समीर महफिले शब प्रोग्राम लेकर आएंगे उर्दू में 8:40 पर, और 9 बजे आप सुनेगा आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम उषा की प्रस्तुति में सुनहरे पल हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम 11 बजे से 12 बजे तक आप गिनीशा से सुनिएगा। प्रोग्रामों का ये छोटा सा डिटेल था, और प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएंगे गानों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट आपका करेंगे हम शब्बीर कुमार कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों के साथ, ये गाना है प्यार किया है प्यार करेंगे मूवी का।

खुशी का एक सफर मिले आपको, खुशियों से भरी जिंदगानी मिले, जिंदगी में जो भी इच्छा आपकी हो वो आपकी इच्छा पूरी हो, बस आपके आपकी खुशियों के लिए जितने भी बहाने हो वो सब आपको मिले, ये हमारी दुआ है सुबह की इस बेला में। बस आप लोग हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर निकलिए, यही हमारी दुआ, हमारी उम्मीद आपके लिए। वैसे लेकर आए हैं जो गाना इस बार आपको सुनवाने के लिए, वो कुणाल गांजावाला की आवाज में है। आप सुनिएगा ये प्यारे मोहन वाला गाना।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया।
2: तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है।
3: नमस्ते अंकल जी।
2: तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई।
4: जीने के है चार दिन।
0: रविवार 26 जुलाई को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मुझसे शादी करोगे 2004 की ये मूवी सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा कॉमेडी से भरपूर मूवी मुझसे शादी करोगे। एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई।
5: विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना।
1: काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती।
5: आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं।
0: रविवार 26 जुलाई को NBC3 पर

0: सुबह का नजराना।
1: चलिए जरा एक कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक कहानी सुनकर मन बातों पे जरूर मनन करने लगता है। चलिए जरा हमारे रास्तों की बाधाओं के बारे में सुनते हैं एक कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर और जिज्ञासु राजा था। इस राजा ने सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर यानी कि एक चट्टान रखवा दिया। फिर वह यह देखने के लिए पास ही छिप गया कि क्या कोई उस विशाल चट्टान को सड़क से हटाने की कोशिश करेगा। सड़क से गुजरने वाले सबसे पहले लोग राजा के कुछ सबसे अमीर व्यापारी और दरबारी थे। पत्थर को हटाने के बजाय वे चुपचाप उसके आसपास से निकल गए। कुछ लोग तो सड़कों के रखरखाव पर भी चर्चा करने लगे। सड़कों का रखरखाव न करने के लिए राजा को जोर जोर से दोषी ठहराने लगे। उनमें से एक ने भी चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं की। अंत में एक किसान वहां से गुजरा और उसकी बाहें तो सब्जियों से भरी हुई थी। जब वह चट्टान के पास पहुंचा तो उसने दूसरों को देखा। दूसरों की तरह उसके आसपास से निकलने के बजाय किसान ने अपना सामान नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे हटाने की कोशिश की। इसमें उस काफ़ी मेहनत तो लगी, लेकिन उसने हार नहीं मारी। आखिरकार वह सफल हो ही गया। फिर किसान ने अपना सामान उठाया और जाने ही वाला था कि तभी उसने सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ देखा। बिल्कुल जहां चट्टान रखी हुई थी वहीं पर पर्स पड़ा हुआ था। किसान ने पर्स खोला। पर्स सोने के सिक्कों से भरा हुआ था और उसमें एक नोट था राजा की ओर से। राजा के नोट में लिखा था कि पर्स का सोना सड़क से चट्टान हटाने वाले के लिए इनाम है। राजा ने किसान को वह बात दिखाई जो हम लोग अक्सर नहीं समझ पाते हैं। सच में बात यही है कि हर बाधा हमारी स्थिति को सुधारने का एक अवसर प्रस्तुत करती है। इस बात पर ज़रूर आप ध्यान देते रहिएगा, ज़रूर आप सोचते रहिएगा कि बाधा जब आती है तो क्या हमें सिर्फ घबरा के आगे बढ़ना है या पॉजिटिव माइंड रखकर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमें प्रगति मिलने वाली है। इस बात को ध्यान में रखकर इस बाधा से एक गुजरें हम। बस हम पेश कर रहे हैं इस बार आप लोगों के लिए शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों का गाना बाजी मूवी का। और इस गाने के साथ साथ हम बढ़ेंगे भोजपुरी के समाचारों की ओर जो लेकर आएंगे अभ्युदय। तो अभ्युदय से सुनेंगे संक्षिप्त समाचार हम भोजपुरी में और उसके बाद मिलते हैं आपसे हम पैगाम आपके नाम कार्यक्रम के साथ।

अपन घरी मिला ले जा ई बखत फजर के 8 बजल बा। सब कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुने जा प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सलाहकार राकेश बकोरी काल सामदी रात के शिकायत दर्ज करावे खातिर सीसीआईडी पहुंचलन। सोशल मीडिया पर ही पब्लिक इंटरेस्ट नाम होला एगो व्हाट्सएप ग्रुप के कोनो तथा कथित स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। इमें ई दिखावे के कोशिश करल गल बाते कि उ MMJ मामला में FCC के एगो अधिकारी के निर्देश देवा था। ई मामला में MSM पार्टी के कई गो पूर्व मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ भी शामिल बा। उ लोग से पूछताछ हो या फिर होवे के चाही त ऐसन संदेश में अपन नाम और फोन नंबर के लॉक के राकेश बकोरी बहुत ही दुखी बाते। उ एकरा एगो गलत इरादा से करल गल हरकत बतैलन और ई पर पूरी जाँच करे के मांग करलन। पल बेरांजे काल सामदी के सरकार के खिलाफ करा रुख अपनैलन। FMP यानी कि फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सेंट्रल कमेटी के बाद पल बेरांजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करलन जेकर संबंध आवत मंगर माने 28 जुलाई के राष्ट्रीय सभा में दुगो बृहद विधेयक माने फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलानियस प्रोविजंस बिल। पल बेरांजे ई बात पर करी नाराजगी जतैलन कि ई दस्तावेज सांसद के कैसे भेजल गल। घर के बिजली बिल के कमती करे के और देश समय स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ावा देवे के उद्देश्य से काल सामदी के क्यूपिप शहर में हाउस होल रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम के शुरुआत होल। ई परियोजना उ परिवार लोगन खातिर ह जेकर मासिक आय 1,50,000 रुपया से कमती है। एकर तहत 3,600 परिवार लोगन के अपन घर के छत पर ही सोलर पैनल लगावे खातिर 75,000 रुपया ले सब्सिडी मिली। इस सुख से मॉरिशस के अमेरिका के नवा टैरिफ व्यवस्था से बहरा रखल गल। एकर मतलब यह कि मॉरिशस के निर्यातक के अगुआ के तहत अमेरिकी बाजार में मिले होला छूट और लाभ आगे से मिलते रही। सूत और लुगा बनाए होला कंपनी वेंसम लिमिटेड के निर्देशक अविनाश गुबर्धन के अनुसार ई निर्यात सेक्टर खातिर एगो बहुत अच्छी खबर बाती। ई सफलता सरकार के बगल से मॉरिशस एक्सपोर्ट एसोसिएशन के संगे मिलके करल गल मेहनत के नतीजा है। ते दूसर देश में रूस के

0: कब्जा खोला यूक्रेन ज़ापोरिज़िया इलाके पर ही। कल शाम दिखे यूक्रेनी ड्रोन हमला में 11 आदमी के मौत हो गल और 14 जना के कस के घाव लग गल। मरे होला में 4 लड़का भी शामिल बाते। ये हमला हौजा के पर्यटक स्थल पर होल जहां पर ही मनोरंजन खातिर आ रहलन जा। यूक्रेनी सेना ये हमला के कोनो कारण नहीं बतैलन। तैक्रवे संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान देवे खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: अब मरने की खबर सुना जा। तागो रोड घोंगुब में, तागो रोड घोंगुब में 4 कोरी 8 बरिस के 88 ओं के श्रीमती असमुन तिलोकचन, श्रीमती असमुन तिलोकचन पैदाइशी नाम घोरा और जिन्हें सब लोग जिनकरा सब लोग क्रिसवंती के नाम से जस्सी जाना थलन जा। उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर बेटा श्री आगिदत्त तिलोकचन के घरे तागोरोद गांगोब से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजवे की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टुडे एट 10 AM अवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में, अवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा में 4 कोरी 11 बरिस के 91 ओं के श्रीमती मीरा आपाजी, श्रीमती मीरा आपाजी पैदाइशी नाम गनू और जिनका रहा सब लोग मीरा के नाम से जस्सी जाना थलन जा। उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटी श्रीमती सुबा सोनू के घरे अवेन्यू जॉन केनेडी वाकवा से उठा के क्रियाक्रम खातिर सोलफेरिनो वाकवा के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM मारीजानी रोजबेल में 3 कोरी 9 बरिस के 69 ओं के श्री रूप नारायण हृदय पैदाइशी नाम सुगुज और क्षमा करें जिनके रहा सब लोग सुगुज के नाम से जस्ती जाना थलंजा और जे फिनिक्स बेवरेजेस कंपनी के पूर्व कर्मचारी रहलन। उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरेवे से मागीजानी रोजबेल से उठा के क्रियाक्रम खातिर मागीजानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM कारोलालियन वाकवा में 3 कोरी 5 बरिस के 65 ओं के श्रीमती दनमौती लक्ष्मा पैदाइशी नाम रसुकल और जिनकरा सब लोग नालिनी के नाम से जस्सी जाना थलन जा और जे LIC के पूर्व कर्मचारी रहलन। उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर पति श्री लक्ष्मा सिउचन के घरे कागोलालियान वाकवा से उठा के क्रियाक्रम खातिर फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 43 ओबट सन बुबासे में 3 कोरी 11 बरिस के 71 ओं के श्री महेश गबिन सिंह जिनकरा सब लोग सुनील के नाम से जस्सी जाना थलन जा। उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घरेवे से माने नंबर 43 एपास खुबसन बुबासे से उठा के क्रियाक्रम खातिर शेबैल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टुडे एट 1 PM मुजलो लेन रोजबेल में 3 कोरी 18 बरिस के 77 ओं के श्रीमती कुलवंती रामफल पैदाशी नाम रामसाराम और जिनकरा सब लोग सुदेवी के नाम से जस्सी जाना थलन जा। उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर पति श्री जगेश्वर रामफल के घरे मुजलो लेन रोजबेल से उठा के क्रियाक्रम खातिर मागीजानी रोजबेल के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू क्लियाफोन नंबर 1 फिनिक्स में

0: फोन नंबर एक फिनिक्स में चार कोरी सात बरिस के कैथोवें सेतों के श्री सुंदत कुनाई, श्री सुंदत कुनाई जिनकरा सब लोग कुनाई के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दिन के एक बज के आधा, आज दिन के एक बज के आधा उनकर घरवे से माने जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू के लिए फोन नंबर एक वाकवा फिनिक्स से उठा के क्रियाक्रम खातिर आले ब्रियो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूडे हाफ पास वन पी एम मार्केट रोड मोताइलोंग में, मार्केट रोड मोताइलोंग में तीन कोरी छः बरिस के 66 के श्रीमती इंदिरा पम्मा, श्रीमती इंदिरा पम्मा पैदाइशी नाम बिकारी और जिनकरा सब लोग इंदिरा के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बातें। उनकर माटी आज दोपहर के दो बजे, आज दोपहर के दो बजे उनकर पति श्री रविनाथ पम्मा के घरे मार्केट रोड मोताइलोंग से उठा के क्रियाक्रम खातिर खैव किया कि शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट टू कारोलिन रोड वाले दे प्रेत में, कारोलिन रोड वाले दे प्रेत में चार कोरी आठ बरिस के 88 अंके श्रीमती सावित्री कुनाए, श्रीमती सावित्री कुनाए पैदाशी नाम पुलवन और जिनकरा सब लोग कुमारी के नाम से जैसी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाती। उनकर माटी आज सपहर के तीन बजे, आज सपहर के तीन बजे उनकर बेटा श्री सूरज कुनाए के घरे कारोलिन रोड वाले दे प्रेत से उठा के क्रियाक्रम खातिर सिपाही भोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM और रॉयल रोड बोबासें में, रॉयल रोड बोबासें में तीन कोरी पंद्रह बरिस के 75 के डॉक्टर विनोद बालगोबिन, डॉक्टर विनोद बालगोबिन की मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज सांझ के चार बजे La Chapelle Ondante Eliensson Royal Road Bobassin se uthake kriyakaram khatir quand le vieux kishmushan bhumi le jawal jai. Cremation today at 4 PM ta jitna jun parivar dukh mein hovan jai, dukh ke ee ghari mein MBC ke bagal se sab koi ke hamni sahanubhuti prakat karat hai sa.
1: रेडियो मॉरिशस
2: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.

सो इस समय सुबह के 8:12 हुए हैं। ये है रेडियो मॉरिशस, आप लोगों के मनोरंजन का बहुत प्यारा सा सिलसिला पेश कर रहे हैं हम। ये है आप लोगों के नाम, आप लोगों का प्रोग्राम, पैगाम आपके नाम। आप जहाँ पर भी होंगे खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। और हमारी ये दुआ है कि आप लोगों के जीवन में खुशियों के पल हर पल आया करें। ये हमारा पैगाम आपके नाम है। बस आप अपने अपनों के नाम भेजिएगा, आप अपने परिवारों दोस्तों के नाम भेजिएगा अपने पैगाम। कोई इवेंट हो, शादी का मौका या फिर कोई भी प्यारा सा इवेंट हो, बर्थडे, शादी की सालगिरह या फिर सक्सेस का मौका, आप ज़रूर अपने अपनों के नाम, अपने दिल से निकले हुए मैसेजेस भेजिएगा। आप अगर भेजना चाहते हैं मैसेजेस तो 5251705 पर भेजिएगा, और जो कॉल करना चाहेंगे तो 4028085 पर कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा कौन सा मैसेज आप किन के नाम करना चाह रहे हैं, कौन से पैगाम आप किन के नाम करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो आपको सुनवाते हैं हम फासले मूवी का ये गाना, और चुप्पी चुप्पी मत साधिएगा, हर बात को आप अपने मन से निकाल के अपने मैसेजेस के वर्ड्स के जरिए हम तक पहुंचाइएगा या

फिर कॉल करके हम तक पहुंचाइएगा। आपके अपनों के नाम हम जरूर पेश करेंगे वो मैसेजेस, पैगाम आपके नाम।

तो इस समय 8:15 हैं और पैगामों के सिलसिले को हम बढ़ाएंगे आगे। और हमारे पैगामों के इस सिलसिले में शामिल हैं माला सुमागू जी। माला सुमागू जी ने बहुत ही सुबह से हमारा साथ दिया है और उनका तो ये कहना है कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफ़ानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूँ तो मिल जाता है हर कोई, मगर आपकी तरह अपनापन नसीब वालों से मिलता है। इस अपने मन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माला सुमागू जी। आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माला सुमागू जी। हमारा साथ सुबह से दे रहे हैं सूरज शर्मा सजादा जी भी त्रियोले से, सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ हमारा दे रही हैं मौदाल बेस से अनीता जी। अनीता जी का कहना है कि आज बिकाई परिवार के यहाँ शादी की शहनाई बज रही है और सभी लोग बहुत ही हलचल, बहुत ही चहल पहल में है, शादी की खुशियाँ मना रहे हैं। कौंदेमास के बिकाई परिवार में आशना और आदर्श की शादी हो रही है और शुभकामनाओं का गुलदस्ता बिकाई परिवार की तरफ से, सामुतोहल परिवार की तरफ से, ईतू परिवार और गोगा परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप लोगों के जीवन में आशना और आदर्श जी बहुत सारी खुशियां मिले, अपनों के बीच आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही सुख से रहें और एक साथ प्रगति करें, एक साथ इस जीवन की हर खुशी को मनाएं।

तो हमारा आपका साथ पैगाम आपके नाम प्रोग्राम में हो रहा है। हमारा आपका ये साथ बहुत ही प्यार के साथ रहे, बहुत ही अपनेपन के साथ रहे, यही हमारी तो उम्मीद रहती है। हमारा साथ सुबह से दे रही हैं सुनीता जी। आज का दिन सभी के लिए बहुत मंगलमय रहे, ऐसी दुआ उन्होंने की है। अपनी मामा विद्वंती को बहुत प्यार भेजा है सुनीता जी ने, पूरे बिहारी परिवार की तरफ से, जो दागुचे के रहने वाले हैं। और सुनीता जी के साथ साथ विश्वानी दुमन जी, जो बाकवा की रहने वाली हैं, हमारा साथ दे रही हैं। हैप्पी संडे सभी श्रोताओं को कहा है, बहनों के को भी कहा है, शोभा और इंदिरा को, फिर नीला और प्रतिभा को, गीता जी को बहुत सारी मंगल कामनाएं भेजी हैं उन्होंने। और विश्वानी जी के साथ साथ हमारा साथ दे रही हैं हमारी श्रोता देवी जी हमेशा हमारा साथ देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी आप के साथ के लिए। और इधर हम बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं सुदेवी जी की तरफ से वंश को। वंश ने अपना जन्मदिन 21 को मनाया और उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएं मम्मा अंजू की तरफ से, पापा विजयन, भैया वैभव, दादी सुनीता की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के चाचा विमल, चाची वर्षा, कजिन निया और वीर की तरफ से, लाहौजा के आजी, मामू, मौसी, मनीषा, मौसा वरुण और कजिन तिया की तरफ से, जिया की तरफ से। आज मालेगा की बेटी श्रेष्ठा का भी जन्मदिन है, 18th birthday, वाओ, तो बहुत स्पेशल।

दे हैं श्रेष्ठा जी, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, मामा माया, पापा जयन, दादी पुष्पा की तरफ से, चाचा चाची और सभी कजिन्स की तरफ से, राम रतन, राम गुलाम, कुआगो, बिल्टू परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बोफ वंश और श्रेष्ठा, आप लोगों के जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।

चलिए जरा बर्थडे विश करते हैं हम हमारे अगले श्रोता को, और प्यारा सा नन्हा सा फैजुला अपना जन्मदिन मना रहे हैं। लॉट्स ऑफ दुआओं के साथ उन्हें जन्मदिन की मंगल कामनाएं भेजी हैं पूरे परिवार ने उनके 11th बर्थडे पर। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद पापा आशाद की तरफ से, ममा रुखसार की तरफ से, उसके डियर ब्रदर मिहाद की तरफ से यहाँ, और दादी दादा नाना नानी चाचा चाची फूफू फूफा पूरे परिवार में, कजिन्स की तरफ से, सदुबाकस परिवार की तरफ से, बिहारी परिवार की तरफ से पोंफालें के। और ये दुआ हमारे पूरे हम पूरे परिवार की तरफ से पेश करते हैं कि हमेशा प्यारा और प्यारा सा फैजुल्ला बहुत ही खुश रहे हमेशा हमेशा, उसको सुख की उसके लिए सुख की वर्षा होती रहे और उन्हें मंगल कामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे विश टू यू फैजुल्ला हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और मंगल कामने जन्मदिन की हम दे रहे हैं रोहन को। रोहन प्यारा सा बेटा आज अपना जन्मदिन मना रहा है मौसिल मौसैन तोंखे में। मम्मा आशिता की तरफ से, पापा रवि की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं, दादा दादी और नाना नानी की तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी मंगल कामनाएं रोहन को। हमारी पूरी टीम आपको बहुत प्यार से हैप्पी बर्थडे कहती है।

और सुयाग से अनूप को बहुत सारी मंगल कामनाएं उनके जन्मदिन के अवसर पर आपको बहुत बहुत सारी खुशियां मिले, ऐसी दुआ आपकी बहन अनीशा ने की है आपके लिए। और अनीशा के साथ साथ मम्मा पापा सब मिलके आपको जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रहे हैं हमारी पूरी टीम के साथ।

0: अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: कोई लाता गुड़िया मोटर रेल, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू।

ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे सबको जिनका है बर्थडे आज। आप लोगों का ये स्पेशल दिन आप लोगों के लिए स्पेशल स्पेशल घड़ियां दिखाए, ये हमारी दुआ है आपके लिए। और चलिए ज़रा हम शोभा बंधु जी के मैसेज की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने फ़ोन किया और बताया कि बुनतिया वाकुआ से शोभा जी के नाती माधव का बर्थडे है। माधव तो रहते हैं इंग्लैंड में, उनके पापा दास, उनकी मम्मा शर्मिला सब मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाई यादव भी मिस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं। पूरे बंधु परिवार की तरफ से, एलिया परिवार की तरफ से, मौसी नीरा, मौसी करुणा, मामू रोशन, मामू अश्विन की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं प्यारे से माधव को। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की तरफ से।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे

0: और उसको एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC Radio presents One Day RJ
0: Open to all Mauritians। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: आपकी आवाज, आपके स्टाइल के इंतजार में फिलहाल तो माइक के सामने हम सुरेखा है, आपका साथ दे रहे हैं, आपके पैगामों को आपके अपनों तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, ये है पैगाम आपके नाम शो। रेडियो मॉरिशस पर हम लेकर आए हैं ये शो और अपनों के बीच अपनापन बढ़ाने का ये जरिया बनाया है हमने। अभी सुनीता की बात हो रही थी तो अनीता जी का मैसेज आ गया। अनीता जी फ्रॉम फ्लिक ऑफ लक सभी हमारे श्रोताओं को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं। संडे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अनीता जी की तरफ से ये जो विश है हैप्पी संडे का, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा साथ दे रही है विश्वानी जी पुतगदो हामलेट से अपने पूरे परिवार के साथ और पूरे परिवार को बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं। उधर नाती निवेश का जन्मदिन है जो कौंद मास के रहने वाले हैं और दादी माँ प्रेमिला सी गुलाम उनको बहुत सारा आशीर्वाद दे रही हैं। और निवेश को ममा रेणुका की तरफ से, भाई निहाल की तरफ से इतनी सारी दुआएं हैं, सिगुलाम परिवार की तरफ से इतनी सारी दुआएं हैं। उनके लिए दुआ ये है कि वे हमेशा तरक्की करते रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू निवेश। हमारी पूरी टीम

और उधर त्रियल की याना भी अपना बर्थडे मना रही है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू याना, आपकी दादी अनसुया की तरफ से, पूरे राम खिलावन परिवार की तरफ से और गोंदे मास्क के सिगुलाम परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू आया।

पैगामों का ये गुलदस्ता, पैगामों का ये सिलसिला, प्रकाशवती जी का मैसेज आया है इस गुलदस्ते में एक और फूल आर्ट करने के लिए। चलिए प्रकाशवती जी की तरफ से हम युधिष जी को शुभकामनाएं देते हैं। प्रकाशवती जी के भतीजे युधिष जी का है बर्थडे और उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रही हैं प्रकाशवती जी और युधिष के पेरेंट्स नम्रता और जयप्रकाश जी, भाई केशव जी। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत सारी मंगल कामनाएं युधिष जी आपको। हैप्पी बर्थडे टू यू।

जन्मदिन की मंगल कामनाएं सभी को, और सभी को जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं बेशक। और चलिए जरा हम हैप्पी हॉलीडेज कहते हैं सभी छात्रों को, सभी अध्यापकों को। आप लोग अपनी छुट्टियां बहुत ही आराम से मनाइएगा, यही उम्मीद हमारी है। फिलहाल तो ये गाना हम सभी छात्रों सभी अध्यापकों के नाम करते हैं, और इसी के साथ समाप्त करते हैं पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। और हम आपको ये बता दें कि 9 बजे आप संक्षिप्त समाचार सुन पाएंगे, उसके बाद आज का तमिल प्रोग्राम, आज का मंगलाचरण कार्यक्रम सुनिएगा तमिल भाषा में आज RSC से। और ये प्रोग्राम आधारित होगा आदि पर्व को पर्व के अवसर पर। तो हमारी आपकी अगली मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ दिन, शुभ संडे, नमस्कार।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, टेक योर टाइम, सुबह के 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ, आपको नमस्कार। अभी
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री दफ्तर में चीफ ऑफ स्टाफ और डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सलाहकार राकेश बकोगी कल रात शिकायत दर्ज कराने CCID पहुंचे। सोशल मीडिया पर पब्लिक इंटरेस्ट नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के कुछ तथाकथित स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है। इन स्क्रीनशॉट्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने MMG मामले में FCC के एक अधिकारी को निर्देश दिए थे। इस मामले में MSM के कई पूर्व मंत्रियों, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ भी शामिल हैं, से पूछताछ हुई या होने वाली है। इन संदेशों में अपना नाम और फोन नंबर देखकर राकेश बकोगी काफी दुखी है। उन्होंने इसे एक गलत इरादे से की गई हरकत बताया और अधिकारियों से मांग की है कि इन पोस्ट के पीछे किसका हाथ है, इसकी पूरी जांच की जाए। घरों का बिजली बिल कम करना और देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, इसी उद्देश्य से शनिवार को क्यूपिप में हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की आधिकारिक शुरुआत की गई। ये परियोजना उन परिवारों के लिए है जिनकी मासिक आय 1,50,000 रुपए से कम है। इसके तहत 3,600 परिवारों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने कहा कि इस पहल से कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी आएगी और देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे पहले CEB की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सब्सिडी प्राप्त करने के लिए DBM में आगे की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। बजट 2026-2027 के पेश होने के एक महीने से भी अधिक समय बाद इस मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल 2026 पेश किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए 25 कानूनों में बदलाव करने का प्रस्ताव है ताकि टैक्स व्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था और साथ ही रिटायरमेंट पेंशन सुधार से जुड़ी बजटीय घोषणाओं को लागू किया जा सके। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शनिवार को कहा कि मैड्रिड के पश्चिम में लगी आग में दमकल कर्मी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं की आशंका के चलते स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। सरकार ने बताया कि सूखे इलाकों में लगी आग की वजह से 70,000 लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। अधिकारियों ने इसे इस इलाके में अब तक की सबसे भयानक आग बताया। उधर यमन से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले हुए। इन हमलों में मिसाइल और ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब के जिजान औद्योगिक शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई। जिजान की एक अहम सऊदी सुविधा को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद।

0: जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मारी जानी रोजबेल में 69 साल के 69 years old के श्री रूप नारायण हृदय जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM, नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन में, नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन में 63 साल की 63 years old के श्री विजय दत्त कन्हैया जिन्हें सब लोग विजय के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे उनके बेटे श्री अविनाश कन्हैया के घर नंबर 15 एवेन्यू पुआव्र 4 बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा 4 बोन की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 1:30 जेबेर रोड रोजबेल में 82 साल के 82 years old के जनाब अजीज मुली जिन्हें सब लोग आगुन के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दोपहर के दो बजे उनके बेटे जनाब असन मुली के मकान जेबेर रोड रोजबेल से निकालकर दफनाने के लिए यूनियन पार्क का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी के साथ आपको नमस्कार। अभी
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कल जारी की गई एक विज्ञप्ति में नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ट्रेन चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर जवाब दिया है। NLTA ने याद दिलाया है कि साल 2005 के बाद से मॉरिशस में टैक्सी के किराए की कोई आधिकारिक दर तय नहीं है। इसलिए उन्होंने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर शुरू करने से पहले ही ड्राइवर से किराया तय कर लें। इसके साथ ही NLTA ने सभी टैक्सी चालकों से अपील की है कि वे आम जनता के हित में सही और उचित किराया ही लें। मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार निर्माण मूल्य सूचकांक यानी कि कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। काउंसिल ऑफ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर्स के चेयरमैन देवेन्ना दालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बाहर से मंगाए गए सामानों की कीमत, फ्रेट मैरिटाइम का महंगा होना और सीमेंट जैसी स्थानीय चीजों के दामों में उछाल आना। हालांकि इस महंगाई का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ रहा है। बड़े निर्माण ठेकेदारों को कभी कभी उनके कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद एडजस्टमेंट क्लूज के जरिए सुरक्षा मिल जाती है, जबकि आम लोगों को बढ़ी हुई कीमतों और टैक्स का पूरा बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। पॉल बेरांजे ने कल सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस यानी कि FMP की सेंट्रल कमेटी की बैठक के बाद पॉल बेरांजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने इस मंगलवार यानी कि 28 जुलाई को राष्ट्रीय सभा में दो बृहद विधेयकों को एक साथ पेश करने की योजना का विरोध किया। ये दो विधेयक हैं फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल। दूसरे विधेयक के जरिए लगभग 58 कानूनों में बदलाव करने की तैयारी है। पॉल बेरांजे ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि ये दस्तावेज सांसदों को कैसे भेजे गए। उनका कहना है कि संसद सत्र से ठीक 3 दिन पहले आधी रात को इतने महत्वपूर्ण बिल भेजना बिल्कुल गलत है। इससे भी किसी भी पक्ष को इन्हें पढ़ने और समझने का मौका नहीं मिलता है। शुक्रवार से मॉरिशस को अमेरिका की नई टैरिफ व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि मॉरिशस के निर्यातकों को अगवा यानी कि अफ्रीकन ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट के तहत अमेरिकी बाजार में मिलने वाली छूट और लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया शहर क्षेत्र में शनिवार को यूक्रेनी ड्रोन हमले में 11 लोग मारे गए हैं और 14 घायल हुए हैं। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। ये हमला उस इलाके के पर्यटक स्थल पर हुआ जहां पर लोग मनोरंजन के लिए आए थे। यूक्रेनी सेना ने इस हमले का कोई कारण नहीं बताया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। मारी जानी रोजबेल में 69 साल के 69 years old के श्री रूप नारायण हृदय जिन्हें सब लोग सूरज के नाम से भी जानते थे और जो फिनिक्स बेवरेजेस के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी

0: ही आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मारीजानी रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारीजानी रोजबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे at 11 AM Hamlet Road, Mont-Saint-André-Main, Hamlet Road, Mont-Saint-André-Main, 78 years old की श्रीमती चुरामणि दिगम, पैदाशी नाम लक्ष्मा और जिन्हें सब लोग चुरामणि के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री राकेश दिगम के घर हैमलेट रोड मोसेलमो सैंत औंद्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोसेलमो सैंत औंद्रे की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन। ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन। मेरे अज़ीज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब अल्लाह तबारक व तआला की इनायत से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह माहे सफ़र अल मुज़फ़र की 11 तारीख है। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आपकी समागतों की नज़र हैं। उर्दू नशरियात बज़्म अक़ीदत निसार अख्तर दिले बेकरां से आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। सामईन, हस्ब मामूल आज भी आप लोग अपने पैगामात, दुआएं, फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर वही है 5251707005। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये महफ़िल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए इस महफ़िल का बाकायदा आगाज़ कलाम रब्बानी की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने कुरान पाक की तिलावत समात फरमाई। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कुरान मुकद्दस को बमंजर ईमान देखा जाए तो पूरा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हैं। रब कदीर ने अपने पाकीज़ा कलाम में अपने महबूब दाने गयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तरह से तारीफ़ व तौसीफ़ बयां फरमाई। कहीं तो कई कई आयात में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मौजूद हैं, तो कहीं पूरी पूरी सूरत ही आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान करती नज़र आती हैं। गोया अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मुकद्दस किताब में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल, किरदार व कमाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत व शफकत के सारे रंग समो दिए। सामईन, याद रहें, आप अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं इस नंबर पर 5251700055251700055।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इन दिनों सर्दी का मौसम अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर हैं। दरअसल अल्लाह तबारक व ताला ने चार मौसम पैदा फरमाए। हर मौसम की अपनी खसूसियत होती है, हर एक का अपना मज़ा होता है। अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़, हर मौसम अच्छा होता है। मौसम की तब्दीली में अल्लाह तबारक व ताला की बेशुमार हिकमतें छुपी होती हैं। हम इंसान जल्दी घबरा जाते हैं। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाए तो कहते हैं कि सर्दी अच्छी है, और अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए, सर्दी सख्त हो जाए, तो कहते हैं कि काश गर्मी आ जाए। सामईन, सर्दी हो या गर्मी, हमें हर हाल में सब्र से काम लेना चाहिए।

दे, आमीन। उनकी बीवी मोहतरमा वाहिदा जीवन, दो बेटे, बहू और चार पोतों की तरफ से ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें। और आखिर में उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है, तो ये अगला कलाम जनाब हबीब जीवन के लिए। मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ हैं। जी हाँ, बरकत तुम्हारे बुज़ुर्गों के साथ हैं। यह फरमान हमारे प्यारे आका दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसका मतलब यह है कि हमारे बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलना सआदत की बात है, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस्लामी अहकामात के मुताबिक गुजारने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ उनका मुकद्दर बनी। वैसे भी माह सफ़र अल मुज़फ़्फ़र में बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का विसाल हुआ था, बिलखसूस दाता गंज बख्श हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर ज़हूर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह। हमें अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर इस तरह सर तस्लीम खम करना चाहिए जैसे हमारे बुज़ुर्गान दीन ने किया था। इस तरह हम देखेंगे कि हमें बरकतें ही बरकतें नसीब होंगी।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। मोहतरमा नुगैज़ा अपने शोहर जनाब बशीर इगा, अपने बेटे शेकली, बेटी नबीला, दामाद बहू और उनके सभी बच्चों के साथ कल उमरे के लिए जा रही हैं। नुमान, नुहैमा, नुमेर, शुमैला, शुमैर की तरफ से ये पैगाम। सबसे पहले तो इन तमाम लोगों को ये मुबारक सफ़र बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनके उम्रे के हर कदम को अपनी बारगाह कबूलियत में जगह अता फरमाए, उनकी इस बाबरकत हाज़री को रहमत, मगफ़रत और बरकतों का ज़रिया बना दे, उन्हें तवाफ़, सगी और इबादत की वो लज़्ज़त नसीब फरमाए जो दिल और रूह दोनों को पाकीज़ा कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए ये अगला कलाम इन तमाम लोगों के नाम।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों की महफिल में चंद लम्हात गुजारने के बाद दिल को सुकून मिलता है? दरअसल ये उन पाकीज़ा सोहबतों की बरकत होती है जहां अल्लाह तबारक व ताला की याद, हुस्न अखलाक और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू बसी होती है। बुजुर्गान दीन की सोहबत और उनके नक्शे कदम पर चलना दिलों की इस्लाह और किरदार की तामीर का बेहतरीन ज़रिया है। जिस तरह खुशबू फरोश के पास बैठने वाला खुद भी महक उठता है, उसी तरह नेक लोगों की सोहबत इंसान के बातिन को नूर ईमान से मुनव्वर मुजल्ला कर देती है। सामईन, नुवेल दी कुवैत से सईदा इरफान जुहान यासीन फरीदा के लिए हम ये मनकबत पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की एक मनकबत की फरमाइश की है, तो ये मनकबत मुलाहिज़ा फरमाएं

मौज़ सामईन, इसी मनकबत के साथ हमारी आज की बज़्म अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती हैं। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को पसंद फरमाया होगा। हर हफ्ते की तरह आज भी आपके पैगामात और मोहब्बत भरी दुआओं का दिली शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं नेक मुरादों को अपनी बारगाह अक्दस में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिल नादा को रुख्सत होना गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले इतवार को होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मॉरिशस से वाले पड़े दे सरिया के काले 11 மணி ஆகிறது।

குள்ள கொய்யங்குதே.

0: Yeah.
1: Number five. படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one, number one.
1: Album Tully Bogre.

你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能。

听众朋友，凡尔歌曲欣赏节目差唔多接近尾声，又要同各位听众朋友告别了，我等人在下次同一节目时间再见。

0: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से मायबू के रहने वालों को सूचित किया जाता है, खास तौर इन गलियों के बनान, कलनी और सिते बीमानिक को सूचित किया जाता है कि मंगलवार 28 जुलाई 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन असुविधाओं के लिए सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्वा सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सुन रहे थे विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, ये रहे जो मॉरिशस हैं।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

हेलो नमस्कार और गुड आफ्टरनून श्रोतागण, हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। हम और आप इस कार्यक्रम में बातें भी बहुत होती हैं और एहसास की अदला बदली भी होती है यहाँ पर, जहाँ पर आप हमें हमसे बात करते हैं। और नंबर दो वही है 4028 8 पर रहते। चलिए आज एक गंभीर जो है मैं विषय लेकर आई हूँ, जहाँ पर आप लोगों का जो है सुझाव भी और आप लोगों का जो अनुभव भी मैं सुनना चाहूँगी। और अगर आप बांटना चाहेंगे तो बेझिझक 4028 8 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो विषय कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनें।

माफी दूसरों के लिए या खुद के लिए, जिंदगी का हर सफर हमें कुछ लोग देता है और कुछ सबक भी। कभी कोई अपना दिल दुखा देता है, दुखा कर चला जाता है, तो कभी कोई दोस्त भरोसा तोड़ देता है, कभी परिवार में मनमुटाव हो जाता है, तो कभी कार्यस्थल पर किसी का व्यवहार हमें भीतर तक चोट पहुंचा देता है। तब एक सवाल, एक प्रश्न हमारे मन में बार बार उठता है, क्या माफ़ कर देना सही है? बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ़ करना कमज़ोरी है, लेकिन सच तो यह है कि माफ़ करने के लिए जितनी हिम्मत चाहिए उतनी शायद बदला लेने के लिए

भी नहीं चाहिए। माफ़ी का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं है, माफ़ी का अर्थ यह भी है कि हम हर बार वही चोट सहते रहें। माफ़ी का मतलब यह है अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर देना है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो आइए इसी विचार, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप बेझिझक आप हमें अपना जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, हमारे साथ बांट सकते हैं। और विषय कुछ इस प्रकार हैं कि माफ़ी दूसरों के लिए या खुद के लिए।

0: लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनसे मिलते हैं। हरीश जी नमस्ते।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी।
1: तो खुशी की बात है, हर बार रविवार को आप आ जाती है, प्रोग्राम करती है, विषय रखती है, आदान प्रदान होती है विचारों के, हमारे अनुभव बांटते हैं, ये हमको बहुत खुशी मिलती है पूजा जी। हम भी सीखते हैं लोगों से, हमारे भीतर जो भाग लेते हैं हम भी उस उन लोगों के अनुभव से सीखते हैं। और आई एम श्योर पूजा आप बहुत सीखते हैं क्योंकि आप तो जवान है, हमारे उम्र पर नहीं आए हैं, लेकिन आपको शायद आपको जरूरी है ये सब अनुभव, सब एक्सपीरियंस जब हम बांटते हैं तो कुछ जरूर आप सीखते होंगे, ये मेरे विश्वास है।
0: मेरा तो हरीश जी,
1: विषय जो आपने रखा है पूजा जी, मैं बहुत नहीं कहूंगा। पहली बात आप कहें खुद को माफ करो या दूसरों को माफ करो, मैं कहता हूँ दोनों सही है। अगर आप अपने अपनेपन में, अपने मन में सोचते हैं कि कुछ गलत काम कर दिया है और ये आपको कोस रहे हैं, तो पहली बात ये है कि हम अपने आप को माफ करना चाहिए। ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि हम इंतजार करेंगे कब वो व्यक्ति जो हमने ऑफेंड किया है हमको माफ करेंगे, वो हमको कहेंगे ओके ओके भूल जाइए हम आपको माफ कर दिया, नहीं। पहली बात ये हमको अपने मन से ये हम अपने आप को माफ करना चाहिए, तो ये मन हल्का हो जाता है, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हमेशा हमारे जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आते हैं, ऐसी व्यक्तियों से हमको मिलते हैं काम में या सफर में, कहीं भी हो जाता है, कोई गलत फहमी से कोई हमको ऑफेंड कर देता है, हमको ऐसा लगता है कि वो हमसे इनजस्टिस किया है, कुछ हम नहीं डिजर्व नहीं करते थे लेकिन वो ऐसी बात कह दिए तो ये हमको ऑफेंड कर दिया, तो हम सच हम महसूस करते हैं अपने मन में कि हम कुछ कोई व्यक्ति हमको ऑफेंड कर दिया है। तो पहली बात ये मैं कहूँगा पूजा जी, जैसे आपने कहा हम अपने मन को हमेशा हल्का रखना चाहिए, कोई कॉन्शियंस हमको नहीं रेपोशे करना चाहिए, तो इसलिए पहली बात हम पहली चीज हम करेंगे ये है, चाहे वो जो व्यक्ति माफी मांगे या नहीं, हम अपने ओर से हमको उसको माफ कर देना चाहिए, दिल से माफ करना चाहिए, कॉन्शियंस से। और ये जब हम करते हैं तो ये बस मन हम साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है और आराम से हम कैसे बोलते हैं पे हम जी सकते हैं, ये मेरा विचार है पूजा जी, थैंक यू वेरी मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। और जैसे आपने कहा कि मैं हर रविवार को आती हूँ किसी ना किसी विषय से, पर मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं आती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक परिवार मिला है और इस परिवार के लिए मैं मेहनत से मेहनत करती हूँ ताकि मैं एक बहुत ही दिलचस्प जो है विषय लेकर आती हूँ ताकि आप लोगों से ढेर सारी बातें हो सके। तो चलिए और भी लोग हैं, चलिए सभी को मैं अवसर दूंगी और धैर्य की मांग है, आइए सुनते हैं एक और श्रोता को। हेलो
2: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते विजय जी, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक, आप कैसे हो?
0: मैं ठीक हूँ, और आपकी ओर से सभी ठीक?
2: हाँ सब ठीक, बात सब ठीक चला था।
0: आज का विषय कुछ इस प्रकार है, मैं आप फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, माफी दूसरों के लिए या खुद के लिए।
2: बहुत गंभीर बटे विषय, बहुत अच्छा बा, हम जितना जनता हमने जितना परिवार हमने दोस्त सुना था सबके बहुत प्रणाम, आपके भी प्रणाम।
0: प्रणाम आपको भी।
2: तो हमारा हमर पर्सनल विषय से जिंदगी में जन प्रॉब्लम तो होते रह लाते, वो का दोस्त रही का परिवार रही, तो सब हमने वो इंसान है, तो सब हमने के जीवन में हिला आवे लटे, सब नहीं सक कोई नहीं सके बोले, सब कोई पाफे बटे दुनिया में प्रॉब्लम तो अपन परिवार में हो लटे, अपन दोस्त संगे हो लटे, इतना छोटा मोटा बात में वो से रूठ जाला, ओकर से रूठ जलाटे, वे कबो बड़ा भी प्रॉब्लम हो जलाटे, प्रॉब्लम इतना हो जाला पहला जाके पुलिस देखे के, पहला जिस चीज खोजे पहले मैसा देखे के आवे देखे के, ऐसा हाँ प्रॉब्लम है शर्मा, हमारे ओपिनियन से जैसे अच्छा बटे वो छोटा मोटा प्रॉब्लम है अपने में चला सुधार लेके और सब ले महान हुई है जो ने वो इंसान के माफ कर देवेला हमर पे सोने ला माफी ओकरा दे देला वो एगो प्रॉब्लम हो गया वो तोर से माफ मांगला तू माफी दे देला तो ये सब ले एगो बड़का जाम हमरा लोग के लटे सोल्यूशन वहाँ ये हटे और है सोल्यूशन वहाँ जो सबको ऐसे करी तो जिंदगी में ऐसा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुई बस की जब है प्रॉब्लम क्या है लटे एगो जालू जी एगो लागाज लागाज हुए घर में डिविजन डायला घर में प्रॉब्लम लागाज करेला पहले तो गुस्सा कोई नहीं सकेला काबू में करे तो हो जाला प्रॉब्लम हुआ जब प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ जीवन लंबा जीवन या फिर लाकू करे या पुलिस देखे मैं एक और सोल्यूशन है जब माफ मांगा चाहे माफ कर देंगे माफ सबसे बड़ा चीज है ये दुनिया में माफ कर देला तो धले प्रॉब्लम हजे की नहीं हो जाए जब प्रॉब्लम आज फिर हुई तो नहीं चाहे फिर से उठाएंगे फिर से चलना फिर से रेलवे करेंगे फिर से अति करेंगे नहीं हमारे विचार से जब हमारा लोग माफी सब हटे जीवन में हमने के जीवन में हमने इंसान है सर एगो इंसान के माफ कर देला प्रॉब्लम है या परिवार के कोनो दोस्त के माफ कर देला तो सब ले हमारा लोग ये फूक गए हटे हमारे जो पेसोनेल हम हमार रहते हैं और जितना जाना सुना था हमने सबको मौका दिया थी सबके बुद्धि सब प्रणाम आपके भी प्रणाम ऐसे सब प्रोग्राम ले हम यातान के
0: बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी बहुत धन्यवाद तो चलिए आज का जो विषय है कुछ इस प्रकार है कि माफी खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए। हेलो
3: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी कैसे हैं आप
3: सब गाड़ी चल रहा है ठीक ठाक से चल रहा है आपके आशीर्वाद से शौचालय के आशीर्वाद से भगवान के आशीर्वाद से सब चल रहा है ठीक ठीक चल रहा है
0: धन्यवाद
3: वो ठीक ठीक चल रहा था कल निकल रहे रूखा सूखा खा कर जीवन जल चल रहा है चाहे अच्छी है एगो बहुत बड़का विषय रखे वह समझ लो है पहले के आदमी तो व्यवहार है सब अच्छी करा जीतो करा था आदमी के हब्बी के एगो लेमोन सांस हो गल बाने बहुत बहुत सांस हो गल बा और वो कैसे बोले लम सा एगो गोबर धांग दिल तो सगरो छटकता ना तो मलंगवा सगरो अच्छी हो गल ना अब कंटा प्लॉट बा तोहर बागाज में तो पहला तो हमरे गड़ी ना समझ ला तो हाई सब नहीं चाहे अच्छी करे के और हर मिशा निमन आदमी के फ्रिकौते कर निमन आदमी के फ्रिकौते कर बता निमन लिस्प्री मिली सीधा रास्ता बोली चले के कैसे जीवन जाए दुख सुख से कैसे जीवन है सब बतलाई ना अब मोवे मोवे आदमी के फ्रिकौते वो कोच बली हु अब एगो सुलार के फ्री एगो एग्जाम बता एगो सुलार के फ्रिकौते कर बता ओका संगत कर बता वो रोज के बोली नाला वेला मिड डाउन दे एंड समझ लो तो वो नहीं अच्छा बात हमने के लिस्ट्री है ना भगवान एगो बहुत बड़ा अति है हमने के सबके लिस्ट्री दे ले बा ना तो जल लिस्ट्री दे ले बा चाला चले के ना निमन से अब तू हर कुछ चला तो वो ठोकर लगता थोड़ा तो तू बोल बा भगवान के गाड़ी देबा नहीं तो एक को ठोकर लगल दू को ठोकर लगल तो अब भी कुछ चला प्रिकॉशन है का है एगो थ्रोजियम कैथ्रियम ठोकर लगे तो बहुत अब जीतो करी तोरा ना दुख मेरा बना हाँ तो हबी भर सके को समाज बदल गल बा बहुत बहुत समाज बदल गल बा तो हमने के साला हमेशा रास्ता है हमारे को सच्ची बोलते है हमेशा रास्ता सीधा चला खा पी निमन से काम कर सब निमन से और उस सब परिवार लोग से वाजा से तब निमन रह बता कैसे प्रॉब्लम वहाँ हुई
0: नहीं हुई
3: ना उम्र

0: Allez, et l'exemple de si vous avez un mauvais admirail, t'as du char qui vous mauvais bas.
1: Non.
0: हमरे छाला देखे के तब दूसर के देख बादा समझना और वो लावी में एरिया ता ढेर कोई करेला बहुत कोई एरिया करेला सिरमा चाहेला कोई करे के ना हमेशा एरिया कर लेने जाब समझना और आदमी के जब बचे बचे वो अफेक्शन से बचे बस ना एक अफेक्शन से बचे बता वो चला कुछ ही रही और सबले बड़ा भगवान है समझ लो। जब एक कुछ एरिया कर लेता भगवान सकेला एक्सक्यूजे कर दे अब हर एक कुछ एरिया कर बता भगवान नहीं अति करी ना है? जब निम्न में तू भगवान के नहीं जाना चाह अब जब अच्छी हो गए मालाद में बोलो सा बोझे हमारा अच्छी करता भगवान नहीं सुनी अब ना जब निमन में रही व्यनित में रही पैसा गप कौड़ी उड़ी सब रहते हम भगवान के नहीं चिन्ह चरी समझ लो। तो हाई सब हमी के चाला सुधारे के और अभी बहुत को लिमोन अभी लिमोन मोडियन हो गल बा आदमी से जैसे और बचाए के सीखे के चाला इंटेलेक्चुअल से कैसे हमी के जाइए जितना श्रोता बा बहुत बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल हवन सो लोग जैसे बचियाल से तो सुने के चाहेला है ना सुनबा तो बीच में जाके रखे के बुद्धि में नहीं तो है ना के सुनबा तो है ना निकल गल बा तो बेरत बना है तो हम ही हमें मान करते किसी जनता लोग के सब छोटा लोग के निमन रास्ता चलो दूसर के नहीं देख अपन देख समझ लो। जितना चादर रही उतने ही बिछाई बना हाँ तब भाई हमारे को छोटा संदेश बा और उस सब सो के परम्परा सब छोटा लोग के प्रणाम कर चाहिए और जे सब बात है एगो निमन सोचे डाल दिया
1: आज तो जैसे और उस
0: तरह गर्मी अच्छे कर चाहिए और एक कुछ कि है जन प्रोग्राम आना चाहता अभी हम या मोहम्मदी के लौंधा में मौलाशो में ढेर कोई सुनेला
1: तब
0: एगो मैडम ढेर हम से बचा था तब बोली हम ही बचाया तब बोले प्रोग्राम बहुत आते रे सोमवार तब बोला के करेला हम बोली है ये पूजा पूजा बेटी करेला
1: मतलब
0: कालोजिन रहेला
1: नहीं कालोजिन नहीं रहेला नहीं कालोजिन नहीं रहेला त्रियोले रहेला त्रियोले
0: हाले हाँ अच्छी ता हवे हम अच्छी कर दिया कुमार तब जाने लगा होल बा ओकर माला जब इसे संग कहे पूछों गिरी होल बा बिन मेक्सिन से बहुत सबके के नमस्ते
1: बहुत बहुत नमस्ते। और जैसे बात कर ला हम तो हये बोला जो हये तो हमने के विनोद जन हा विनोद सुधा जी बोलन जा कि संगत करा जान के पानी पिया छान के तो अब चला एगो और एगो श्रोता बाते ओकरा हमने सुनी रहा सा प्रणाम
2: प्रणाम प्रणाम
1: कैसे हैं आप
2: सब ठीक है पूजा जी
1: आपका स्वागत है और आपके पास जो है हमारे श्रोतागण के लिए क्या संदेश है क्या आपका जो है विचार है जो आप बांटना चाहते हैं और विषय कुछ इस प्रकार है कि माफी दूसरों के लिए या स्वयं के लिए
2: क्षमा
1: जी क्षमा
2: तो हाँ जानते हो एकदम से माफ कर देंगे तो फिर क्या हुआ यदि कोई आपके घर में आकर आग डाल दे तो आप माफ कर देंगे
1: नहीं
2: आप नहीं कर सकते हैं। हाँ तो एक बार एक शेर बूढ़ा शेर बूढ़ा हो गया था तो वो सोता रहता था तो सभी लोग आकर कोई डंटा से मार देता था कोई लात से मार देता था कोई पत्थर चलाकर मार देता था तो वो सब सहता था। सहते सहते एक बार एक दूसरा शेर आया कहा कि अरे भाई क्यों तुम ऐसे सोए हो कुछ तो करो। कहते हैं मैं जब बूढ़ा हो गया हूँ भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ तो बोला कम से कम थोड़ा गुरनाओ। तो सोचा कि अच्छा बोल रहा है तो सच ही एक दिन जब लोग मारने लगे उसे तो उन्हें गुरनाया जोर से आवाज तब से सभी लोग डर गए सब लोग डर गए अब कोई उसे मारता नहीं है। तो मतलब कि माफ जहां तक हो सकता है कर सकते हैं। यदि माफी माफी कर दे तो फिर क्या होगा जानते हो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज एक राजा को रोका था वो राजा जो है अपने लोगों को लेकर एक नारी को ले जा रहा था तो राजा स्वामी दयानंद ने कहा राजा जी आप इतने बड़े महान व्यक्ति हैं और आप एक ऐसे औरत को ले जा रहे हैं

0: आपको शर्म होना चाहिए, बल्कि उसे एक, एक क्या कहूं, वो ऐसा शब्द बोला कि राजा वो बुड़बका गया। तो कहा राजा, कहा मैं तुम्हें बतला दूंगा, तूने मेरी बेइज्जती की, मैं तुम्हें बतला दूंगा। तो उन्होंने खरीद लिया उस नारी को, और जितने उनके, अब क्या किया, उनके जो जो पकाने वाले थे उनको भी खरीद लिया। जहर देते गया, जहर देते गया, जहर देते गया। अंत में उसको ये बोतल पीस कर उसके दूध में डाल दिया, और स्वामी दयानंद तो इसे लेकर गदगद गदगद मार लिया, और डॉक्टर को भी खरीद लिया। हमारे लोग नहीं थे, गैर लोग थे, वो डॉक्टर को भी पैसा देते रहे देते थे। अंत में जो उसका प्राण छूटने लगा, तो उन्होंने बुलाया वो नौकर को, इतना बोले तक पैसा उनको, जितना पैसा था सब दे दिया, और कहा कि देखो मैं तुम्हें माफ करता हूं, अनजान में तूने ऐसा कर दिया, और यहां से तुरंत तू जहां तक हो सके दूर भाग जाओ, वरना लोग तुम्हारा जान ले लेंगे। तो महर्षि दयानंद ने सच्ची उन्होंने माफ किया, लेकिन आज उसका नाम अमर हो गया। आज तक सभी लोग उनको बहुत महान ऋषि मानते हैं, और उनके जो बतलाए हुए मार्ग है, आज सभी लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ पा रहे हैं। तो आज की मेरी ये थी, थोड़ा सा यही था विचार। धन्यवाद आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और श्रोता है लाइन पर, राइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या विचार है। हेलो,
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार
1: नमस्कार राधा जी, कैसी हैं आप?
2: जी। मैं अच्छी हूँ, पहले मुझे बताइए विषय क्या है। मैं अभी अभी घर में प्रवेश कर रही हूँ।
1: और विषय कुछ इस प्रकार है कि माफी जो है, क्षमा, हम खुद
2: हाँ,
1: के लिए करना चाहिए या फिर दूसरों के लिए?
2: क्षमा हमें दूसरों, यदि किसी से गलती हो जाए तो सबसे बड़ा दान है क्षमा दान। लेकिन हम मनुष्य हैं, कभी कभी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से देखें, क्षमा से बढ़कर किसी के लिए कोई सजा नहीं होती। अगर किसी ने कोई गलती की, आपका बहुत नुकसान किया या आपको बहुत दुख दिया, फिर भी आपने उसे क्षमा कर दिया, तो ये क्षमा उसके लिए, क्षमा तो है ही, लेकिन उसे खुद महसूस हो जाएगा, मतलब कि उसकी अंतरात्मा उसे खुद कहेगी कि उसने क्या किया है, गलत किया सही, ये वो स्वयं जान पाएगा। इसलिए क्षमा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ क्षमा तहाँ आप, ईश्वर को हम बोलते हैं। इसलिए क्षमा सबसे बड़ा दान है। मैं कहती हूँ कि क्षमा करना उचित ही है, फिर भी हम मनुष्य हैं, कभी कभी हम करना नहीं चाहते हैं ये, जब हम बहुत ही चोट लगती है, आघात होती है तो। लेकिन सबसे बड़ा, अगर जब किसी को क्षमा कर दे तो ईश्वर भी हमको माफ कर देगा, और वो सामने वाला व्यक्ति वो भी, मतलब कि अपनी गलती का उसको भी एहसास हो जाएगा। यही मेरी मेरी जो भावना है, मैं बोल रही।
1: बहुत बहुत
2: धन्यवाद,
1: धन्यवाद राधा जी इस विचार
2: शुभ
1: के लिए, और
2: संध्या
1: शुभ संध्या
2: आपको
1: आपको।
2: भी। हाँ
1: आपको जी धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है कि जो हम करते हैं ये हमारा कर्म है, और जो हम दूसरों के लिए करते हैं ये भी हमारा ही कर्म है, और जो दूसरे हमारे साथ करते हैं ये उनका कर्म है। परंतु हर किसी का दिल, हर किसी का एहसास भिन्न होता है। और जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये आशा मत रखिए कि वो भी आपके लिए कुछ करेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा भी, शिव शंकर ने भी इस संसार को बचाने के लिए हलाहल अपने कंठ में धारण कर लिया था, निस्वार्थ होकर सभी के लिए अपने ही कंठ में पीरा ले लिया था।

0: उसी सम्मान जो दूसरों के लिए जीता है, उसके लिए स्वयं परमात्मा ही रक्षा करते हैं। ये बहुत सारे लोग हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। आशा जी को हम सुनते हैं कि उनके साथ उनके पास क्या विचार हैं। नमस्कार आशा जी।
1: नमस्ते पूजा जी और समस्त बुजुर्गों को भी आशा जाने के लिए साधन नमन है। विषय अनुसार मेरा विचार ये है पूजा जी, देखिए जिसका दिल बड़ा होता है वो माफ कर देता है, और जो बिना हिचकिचाहट के माफी मांगता है वो कभी छोटा नहीं कहलाता है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें सामने वाले से माफ़ी मिले तो हमें भी तो अपना दिल बड़ा रखना चाहिए ना, हमें भी तो बात भुला कर माफ़ कर देना चाहिए ना। बात रिश्तों में हो, दोस्तों में हो या कार्य स्थल में हो, जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें हो ही जाती हैं जहाँ कोई ना कोई गलती हो जाते हैं, जिसके लिए ऐसे सिचुएशन आकर के हमें क्षमा मांगनी पड़ती है या क्षमा करना पड़ता है। पर हाँ सावधान इस बात के लिए होना चाहिए, अगर आप जानबूझकर एक ही गलती बार बार करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को नीचा गिराते हैं और उनसे जाकर क्षमा मांगते हैं तो ये गलत बात है। क्योंकि एक बार अगर एक गलती हो जाए तो आपको क्षमा मिल जाएगी, पर अगर बार बार आप उस गलती को दोहराएंगे और क्षमा की याचना करेंगे तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि आपको बार बार क्षमा मांगे। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी पूजा जी, देखिए ना अगर सबका दिल एक माँ की तरह हो तो परिवार में कभी क्लेश न हो। जिस तरह से एक माँ ममता की दरिया होती है, अपने बच्चे की हर भूल को गलती को क्षमा कर देती है, अगर इस संसार में भी सबका दिल ऐसे ही हो, सहनशील हो, शांत हो, वो तो जीवन में क्लेश नहीं होंगे और शांति बनी रहेगी। तो इसलिए मेरा मानना ये है हम ईश्वर के पास भी जाते हैं तो क्षमा की याचना हर रोज कहते कि आज दिनचर्या जीवन में छोटी मोटी भूल तो हमसे हजारों होती ही रहती है, तो हम ईश्वर से कहते हैं भगवान हमें क्षमा करो, हम पर दया करो, तो हमें भी तो अपना दिल बड़ा करके क्षमा के कहते हैं ना दानों में दान, क्षमा का दान जो होता है वो हमारे धर्म ग्रंथ में श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्षमा करना ये इंसानियत का सबसे बड़ा कर्म भी है और कर्तव्य है, पर सावधानी इसी बात के रखे कि बार बार एक गलती को न दोहराइए जिसके लिए आपको बार बार शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। बस पूजा जी यही कहूँगी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: आशा, कहूँगी शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी। और एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप?

0: कर सकते हैं। अभी के जमाना तो बहुत बहुत बिगड़ा हुआ है, जानते हैं कि घर में ढुक करके बूढ़ा बूढ़ी को चीप के मार देते हैं, मार देते हैं, पैसा गहना सभी लेकर चले जाते हैं। उसे माफ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कभी माफ नहीं। ये बड़ा बड़ा कैसे रहते हैं वो लोग, सोचते नहीं हैं जी कि ये सो रहा है घर में, अकेला है, मार करके सब कुछ लेकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं माफ करना चाहिए। ये छोटा मोटा एक कसूर हो, छोटा मोटा तो माफ कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा उसी उसी और अथी मिलेंगे। हर बार वो क्रीम करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये तो मुझे माफ कर दिया, फिर से मैं जाऊंगा चोरी करने के लिए, उसे दुख देने के लिए। ये बहुत सोच समझ कर माफ करना चाहिए, सभी को माफ नहीं करना चाहिए। ये हमारे विचार हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद आपको लाइन मिला, और शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। एक और श्रोता है लाइन पर, शायद लाइन में कुछ खराबी, कोई बात नहीं। जिस प्रकार से मैंने कहा हाल में, किसी के साथ अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि उसके पास भी वैसा ही दिल हो जिस तरह आपका दिल हो। इसीलिए क्षमा तो कर देनी चाहिए, पर उससे मिला सबक, उससे मिला सीख कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
1: नमस्कार वीना जी, आपका ही इंतजार कर रही थी मैं।
2: मैं कब से फोन लगा रही हूँ बेटी, लग ही नहीं रहा है।
1: चलिए कोई बात नहीं,
2: मैं फोन रखने वाली थी, मैंने सोचा आप शायद समय भी हो रहा है या क्या।
1: नहीं नहीं बताइए।
2: हाँ, तो मैं जल्दी जल्दी एक दो बातें जोड़ देती हूँ, जो क्षमा यानी कि माफी पे आपने जो आज रखा है।
1: माफी दूसरों के लिए या खुद के लिए?
2: हाँ तो देखिए ना, कभी कभी ऐसा प्रसंग आ जाता है कि माँ, हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को माफ करें या खुद अपने आप को माफ करें, दोनों चलता है। लेकिन क्या है कि ये बहुत बड़ा शब्द है माफी, माफी, माफ यानी कि क्षमा। शास्त्र में एक श्लोक आता है एक दोहा देखा कि क्षमा बड़न को चाहिए कोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जब भृगु ने मारी लात। एक ऐसा प्रसंग आता है, मैं प्रसंग के आधार पर समझाती हूँ, सुन रही है ना आप?
1: हाँ मैं सुन रही हूँ आपको।
2: तो भगवान विष्णु को भृगु ऋषि ने उनकी छाती पे लात मारा था, तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया था, क्योंकि तो कहा कि आप इतने मेरे छाती का छोड़ है वज्र के समान, कहीं आपकी पाँव में चोट तो नहीं आ गई। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ों का काम होता है मतलब छोटों की गलती पर माफी, माफ करना, क्षमा करना। लेकिन ऐसे कभी कभी ऐसी भी गलतियाँ होती है जो जैसे कि हम उसको क्षमा नहीं कर पाते हैं। जो किसी ने मानो आपको गहरी चोट दे दिया हो, या आपका दिल दुखा दिया हो, या किसी भी तरह से आपका कोई हानि पहुंचाया हो, तो आप ऐसा लगता है कि इस आदमी के साथ ना मैं जीवन भर बात नहीं करूंगी, जीवन भर इसको माफ नहीं करूंगी। लेकिन फिर मैं, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि माफ कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हम इंसान गलतियों के पुतले हैं, कोई संसार में कैसे बोलते हैं परफेक्ट नहीं। हम सोचे अपने आप पर, हमसे सुबह शाम कितनी गलतियां होती होगी परमात्मा की नजर में। लेकिन परमात्मा क्या है कि वे हमें हर क्षण हमारी भूलें, हमारी जो गलतियां वो अनदेखा करके हमें क्षमा ही तो करते हैं ना। अगर क्षमा नहीं करते, वो ऐसा नहीं कहते कि आज इसने ऐसा किया है तो मुझे इसके हिस्से की धूप नहीं दूंगा, या हवा नहीं दूंगा, या खाना नहीं दूंगा। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है ना, इसके हिस्से की रोशनी से नहीं, इसे अंधेरे में रखूंगा, ऐसा नहीं करते प्रभु। तो जब वो क्षमावान है तो हम किस क्षेत्र की है पूजा जी?
1: जी
2: तो मैं समझती हूँ कि हम उनके अंश है, तो हमें उन्हीं से थोड़ा बहुत तो सीखना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हो सकता है गुस्से में या क्रोध, हम कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि हम थोड़ी देर के लिए बहुत वो हो जाते हैं,

0: हैं कि नहीं हम हमसे नहीं होगा इस आदमी में, लेकिन मैं कहती हूँ ये जैसे कि पहले एक भाई ने शुरुआत में कहा था हरीश भाई ने कि ये हमारे मन पर एक बोझ बन जाता है। जब आप किसी के साथ अनबन में रहते हो ना, या कुछ हो गया है आप उनके साथ, आपकी अनबन हो गई है आप, तो ऐसा लगता है कि आपके मन पर जैसे कि एक बोझ रखा हुआ है। लेकिन जब आप सच में क्षमा मांग लेते हैं ना, क्षमा मांग लेते हैं या क्षमा कर देते हैं, पहले अपने आप से भी क्षमा मांगना, भगवान से बोलना शायद मैंने भी कोई गलती की होगी, तो स्वयं को क्षमा करना चाहिए, मांग लेना चाहिए परमात्मा से, और सामने वाले को भी क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि हम इतनी योग्यता नहीं है पूजा जी की हम किसी की, जैसे बोलते हैं किसी को जज कर पाए के लिए, समझ रहे हैं ना। पता नहीं आपको, मेरा विचार है कि मेरा व्यक्तिगत यही है, क्योंकि मैं तो उदाहरण शास्त्रों से ही लेती हूँ, परमात्मा से ही लेती हूँ, सोचती हूँ जब वे हमें क्षमा कर सकते हैं, इतने जीवन दिया है, इतने सालों तक हमें जीवित रखा है, तो हम तो हमसे तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी गलतियाँ होती होंगी, गलती सुखा देते हैं कि कभी झूठ बोल देते हैं, कभी कुछ हमसे होता ही है कि नहीं।
1: हाँ।
0: तो ऐसा सोच के मैं समझती हूँ कि हमें क्षमा कर देना चाहिए, मन में ऐसा बोझ लेकर संसार से जाना भी अच्छा नहीं होता,
1: नहीं अच्छा, और ये बोझ अंदर ही अंदर आपको खाता है।
0: जैसे आप फ्री नहीं हो पूरी तरह से, समझ रहे हैं ना।
1: हाँ।
0: आप एक अपने पर एक पहाड़ जैसा कुछ लेकर जा रहे हो, आपको एकदम से सरल सीधा हल्का होके जाना है उनके दरबार में, भारी होके नहीं। मेरा तो बस यही मेरा विचार ये है पूजा जी, पता नहीं आपको
1: बहुत
0: लगा।
1: अच्छा लगा, और आपके विचार हमेशा मुझे ना कुछ सिखा कर जाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ संध्या,
1: शुभ संध्या,
0: और ऐसे ही ऐसे प्रोग्राम लाते रहिएगा।
1: धन्यवाद धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद, जीते रहिए।
1: और अभी जो है धनी जी, शोभा जी और कमला जी साथ में हैं, संगीता जी गोजिल से भी हैं, आप लोगों से धैर्य की मांग है, बस थोड़ी सी आप लोग बात कर लीजिए ताकि मैं सभी जो अभी लाइन पर हैं उनको भी मैं अवसर दे पाऊँ। हेलो शोभा जी, नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी,
2: हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ, एक दो लाइन सुना देती हूँ।
1: चलिए सुनाइए।
2: अगर अब मैं अपनी बारे में, अपनी नहीं, हाँ, ये विषय पर बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी से प्यार किया,
1: अच्छा,
2: अगर वो लड़का आये मेरे घर में,
1: हाँ,
2: मेरा सब कुछ जान गया, पहचान लिया, मैं उसके खाना दिया, घूमने गई, अब वो लड़का मुझे धोखा देके चले गई,
1: हाँ,
2: वो भाग गई
1: भाग गया,
2: दूसरे
1: लड़की हो गया,
2: हाँ, दूसरे लड़की के साथ,
1: अच्छा
2: तो मैं कैसे उसको माफ करूंगा?
1: अच्छा,
2: आली बोलिए पूजा जी।
1: नहीं, माफ नहीं करना चाहिए, जब तक आप माफ नहीं करोगी तब तक आप मूव ऑन भी नहीं कर पाएंगी।
2: जी हाँ, तो वो मेरा दिल दुखा कर चले गए, मुझे कैसे
1: रुला कर चले गए।
2: जी हाँ,
1: रुला कर चले गए, अच्छा,
2: दिल तोड़ कर चले, हाँ, गए, हाँ, कैसे वो गाने है, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल, हाँ, तो मैं उसको कहाँ ढूंढूंगी,
1: हाँ,
2: तो कैसे मैं माफ करूंगी,
1: हाँ,
2: ऐसे बात छोटी छोटी बात है जो किसी ने कुछ कह दिया, एक चटकन मार दिया, वो कैसे है, हम लोग महिला में सब तरह के पलाब होते हैं ना, तो इस छोटी छोटी बात को हम तो माफ कर दी,
1: हाँ,
2: करेंगे,
1: हाँ,
2: लेकिन जब वो लड़का भाग गया तो मैं कहाँ ढूंढूंगी, तो एक दाग डाल दिया ना मेरे दिल में,
1: हाँ,
2: तो मैं सोऊंगी जागूंगी हर टाइम पर टाइम, मैं उसके इमेजिन करूंगी वो ऐसे किया ऐसे किया, तो इस आली तो मुझको उसको जवाब चाहिए,
1: हाँ,
2: पूजा जी,
1: हाँ,
2: कहिए क्या करेंगे
1: ये। मैं अपने अनुभव से ये कहूंगी,
2: मेरा तो दिल बहुत कठोर है, मैं बोल देती हूं।
1: मेरी माँ हमेशा कहती थी कि ये मेरी अपनी अनुभव है, मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाई है कि अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है, जब कोई बुरा करके जाता है तो अपने हाथ जो है अपने दिल के पास रखो, और अगर वहां से जवाब आया कि तुमने कोई गलत नहीं किया तो उसे माफ करके उसको छोड़ दो, जब छोड़ देते हैं तो वो

0: उसका जो गिल्ट है ना, ये उसको खाएगा, आपको नहीं खाएगा, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, पर वो इंसान शायद जीवन में कहीं ना कहीं कर्म लौट कर आता है, तो
1: जी हाँ
0: लौट
1: तो
0: कर आएगा।
1: वो आप वो इसी तरह है, इंसान नहीं है इस दुनिया में, दुनिया तो कैसे कहते हैं बदल गई है ना,
0: हाँ।
1: अभी के कैसे कहते हैं उल्टा हवा बह रहे है ना,
0: हाँ।
1: अपने तो अपने फैमिली नहीं होती है, वो ऐसे बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं,
0: हाँ।
1: तो सभी सभी यहाँ प्रॉब्लम है,
0: हाँ।
1: लेकिन आपके ज्यादा घर पैसा सब कुछ है तो आपके फैमिली देख के आपके जाते हैं, वो माफ कैसे करेंगे,
0: हाँ।
1: कैसे करेंगे, वो कहते हैं ये कैसे मिला, कैसे मिला ऐसे आपका पास।
0: नहीं तो शोभा जी, जब तक आप माफ नहीं कर पाओगी तब
1: जी
0: तक
1: हाँ।
0: ये आपके लिए हानि करेगी, क्योंकि ये आपके दिल में एक बोझ बनकर रहेगी ना, कि हाँ मैं ये वो, आप
1: तो वो
0: हमेशा
1: दाग
0: याद
1: कैसे लिखे
0: करते
1: लेंगे,
0: रहोगे।
1: वो दाग कैसे लिख लेंगे,
0: दाग नहीं
1: पहले प्यार
0: निकलेगा,
1: तो पहले प्यार है ना।
0: हाँ, पर ये धीरे धीरे धीरे धीरे भगवान शक्ति देता है कि
1: जी
0: आप उस
1: हाँ
0: घाव को भूल जाए।
1: तो तुम भुला दो तो मैं नहीं भूल पाऊंगी पूजा जी, यही मेरा कहना है
0: यहाँ कुछ दाग ऐसे होते हैं जो हम भूल नहीं पाते, पर
1: ना,
0: ये
1: तो मैं दो लाइन बोल देती है, बोल या ना,
0: हाँ
1: जो समझ गए तो समझ गए, जो नहीं समझे तो मैं क्या करूंगी।
0: आपने तो मुझे हंसा दिया, बहुत
1: तो
0: बहुत
1: इसीलिए
0: धन्यवाद।
1: मैंने भाग लिया है पूजा जी आपके हंसाने के लिए।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये इस आज का जो समाज में इसी का चलन है, तो शोभा जी से मैं यही कहूंगी कि आपको भगवान शक्ति दे कि हर दर्द को आप जो है भुला पाएं। आज में अभी कमला जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कमला जी।
2: नमस्ते पूजा जी, कैसी हो
0: नमस्ते,
2: आप?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: हम तो बस ठीक है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
0: जी
2: प्रोग्राम
0: जी
2: सुन रहे हैं। हाँ देखना ना, जहाँ किसी पंछी जाल में फंस गई।
0: हाँ जी, अच्छा
2: हाँ सुन रहे हैं सबको, सबको अच्छे से बिताना। तो हम एक अच्छा सुन दो तीन जो लाइन बोला
0: बोलिए
2: माफी पर।
0: जी।
2: हाँ तब गलतियां इंसान से होती हैं, यहाँ समझ ले जो इन्हें, वही है समझदार बड़ा। रूठना मनाना तो रीत है जीवन का, मांग ले जो माफी झुकता नहीं सिर बड़ा। शब्दों के बाण से जो दिल दुखाए कभी, एहसास हो अगर तो पलकें झुक जाए अभी। एक छोटी सी माफी मिटा देती है दूरियां, फिर से खिल जाती हैं रिश्तों की फुलवारियां। क्षमा करना है गुण महान इस धरती पर, दिल साफ हो तो मोल नहीं गलती का। चले चलो गिले शिकवे सब आज भुला दे हम, रूठे हुए अपनों को गले से लगा ले हम। समाप्त छोटी सी कविता।
0: बहुत ही सुंदर, गले मिलना और सब कुछ भुला देना, यही सबसे बड़ा कर्म है हमारा। और जिस प्रकार से आपने कहा अभी हाल में कमला जी, कि ये आवश्यक है कि हम किसी को माफ़ कर दें। अगर ये हम यही हम सोचे कि जो हमने अच्छा किया वो भी अच्छा होगा, मेरे साथ भी अच्छा होगा, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है।
2: और दिल में रखबा हवे लेके बैठ जाएबा, इस तरह से होइबा, ऐसे होल औसे होल, प्लीज तो माफ कर दे।
0: और यही
2: और
0: टेंशन
2: कहते
0: देता है
2: हैं ना,
0: आपको। हाँ
2: हाँ और कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं सब्र का फल मीठा है, तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा ना
0: ये हम पर
2: सबसे।
0: निर्भर नहीं है।
2: हाँ
0: हाँ
2: हाँ हाँ
0: हम किसी से मिलते हैं एक वजह, एक कारण के कि एक कारण से हम किसी से मिलते हैं, और हर कोई जो आता है कारण के लिए, कुछ सिखाने के लिए या कुछ बदलाव लाने के लिए, इसीलिए हम किसी से मिलते हैं। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये संसार ही बड़ा है, तो इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं। अब हमें इस पर हम पर निर्भर है कि हम किस से ज़्यादा संपर्क रखें और किस को अपने जीवन से निकाल दें, और जो सबक मिले उसे फिर से ना दोहराएं बस।
2: हाँ और कहते हैं ना कि इस धरती पर तो उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी
0: कुछ
2: नहीं
0: नहीं
2: मिलता ना
0: चलता।
2: पूजा जी,
0: हाँ
2: ना
0: ये तो
2: जो
0: है।
2: वो

0: जो वो चाहेगा तो वही होगा ना इस धरती पर।
1: पर ऐसा भी,
0: हाँ
1: ऐसा भी समय आता है कमला जी कि ठेस इतनी बड़ी हो कि माफ करना, मान लीजिए ये एक भारीपन लग जाता है कभी कभी दिल में, कभी कोई
0: हाँ
1: इतना इतना बुरा बुरा जो है शब्द बोल देता है। मान लीजिए किसी ने आपके माँ के बारे में कुछ कह दिया, पिता के बारे में कुछ कह दिया, अब आप कैसे सहन कर सकते हैं उसको माफ कर देना चाहिए, ये आप कभी भी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जो है हर इंसान अपने माता पिता से प्यार करते हैं। तो ऐसे भी कभी कठोर शब्द होते हैं जो लोग आपके परिवार के सदस्यों के को कह देते हैं तो आप माफ नहीं कर पाते हो। तो उसी कारण मान लीजिए कि ये माफ करना ऐसे समय में तो आप नहीं कर पाते हो, पर हमें इसे भुलाना ही चाहिए ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर पाए,
0: बहुत ठीक बोली आप।
1: है ना। और आपके आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको कहेंगे शुभ संध्या।
0: आपको भी बाय बाय
1: बाय
0: बाय
1: बाय बाय बाय। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको सुनते हैं। धनी जी नमस्ते।
2: नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार धनी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: आइए बताइए हमारे श्रोतागण के लिए आपका क्या विचार है।
2: मेरा विचार है आज का इंसान झुकना नहीं चाहता है। जो कुसूरवार है वो झुकना नहीं चाहता है।
1: सही कहा आपने, बहुत सही।
2: वो माफी नहीं मांगेगा,
1: नहीं मांगेगा।
2: अगर माफी मांग लिया तो उसके लिए शर्म की बात होगी, वो झुक गया। और अगर वो कुसूरवार है और आपने उसे माफ कर दिया तो वो समझेगा कि आप बुजदिल है, डर गए उससे, उसे माफ किया, आप झुक गए, तो ये भी ठीक नहीं है। जो कुसूरवार है उसको आपने उसे माफ कर दिया तो ये भी ठीक नहीं है। नहीं, सिर्फ माफ माफ बोलने से ये कुछ नहीं बनेगा। जो कुसूरवार आज का इंसान झुकना नहीं चाहता है माता पिता के सामने, आज के बच्चे नहीं कहेंगे माँ मुझे माफ कर दो, मैंने भूल कर दिया, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। पहले के समय में चरण छूते थे माफी मांगने से, माफी मांगते समय चरण छूते, पैर पर लगते थे कि बाबा मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज मैं देर से आया, क्षमा कर दो, ऐसी बात होती थी
1: जी।
2: लेकिन आज के इंसान झुकना नहीं चाहता है
1: जी।
2: क्या बोलूं इससे ज्यादा, आज के बच्चे ही झुकना नहीं चाहते हैं बड़ों के सामने।
1: पर आप बड़े हैं ना धनी जी, आप माफ कर लीजिए, क्योंकि
2: मैं
1: जब
2: तो
1: आप
2: माफ करता।
1: जब आप माफ कर लेंगे तो मान लीजिए आपका दिल हल्का है और आप बड़े होकर आशीर्वाद देकर।
2: इस सिर्फ मैं अपने नहीं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ, ये सभी में ऐसे है, आज के बच्चे ही ऐसे है।
1: हाँ, ये जो प्रतिशत
2: नहीं है, बिरला ही कोई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे हैं। ऐसा है।
1: और मैं ये कहूँगी
2: ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं है,
1: ज्यादा बच्चे ऐसे नहीं है। और मैं
2: और घर में एक बात कहूँ, अगर घर बर्तन ज्यादा है तो
1: आवाज ज्यादा होगी,
2: ज्यादा समस्या आती है, ज्यादा खड़ंग खुड़ंग होता है। तो मेरा मतलब है कि अगर ज्यादा परिवार है, बड़ा परिवार है, उसी में आग लगाने वाला होता है।
1: ये तो
2: हाँ ऐसा होता है। और जो जिसने आग लगा लिया वो कभी नहीं मानेगा कि मैंने आग लगा लिया।
1: ये तो है
2: जी, इसी में परिवार में अनबन होता है।
1: और जिसके नियत में खोट है ना धनी जी, वो सही इंसान को गलत ठहरा कर ही छोड़ेगा। वो
2: जी,
1: कभी
2: ऐसा
1: भी
2: है,
1: वो कभी
2: होता
1: नहीं
2: है आजकल।
1: हाँ ये तो
2: और
1: है,
2: उसी का बोलबाला होता है,
1: उसी का बोलबाला होता है। और वो रो कर ऐसे करेगा कि आप आपने गलती की है,
2: झूठ मूठ के आंसू ये निकल जाता है।
1: ये तो है, ये मगरमच्छ के आंसू सभी बहाते हैं
2: जी जी।
1: पर
2: जी, अवश्य।
1: मैं
2: धन्यवाद आपको,
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी। मैं तो बस यही कहूंगी कि पछतावा जो है सबसे बड़ी बात है। अगर आपने किसी को माफ कर दिया और उसको पछतावा हुआ, उससे बड़ा और कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कहेंगे शुभ संध्या। एक

0: और श्रोता हैं लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। प्रणाम नानी जी।
1: हाँ आशीर्वाद बेटी, कैसे है वो?
0: अच्छा है, तो हर समाचार ठीक ना?
1: हमार समाचार अच्छा हुआ बेटी, हम अभी आके सुना था। नहीं रानी अभी तो नहीं, एगो पूजा में रानी आके सुना था। क्षमा क्षमा कोई के बात बोल देब तो क्षमा मांग देब तो कितना जीव सच्चे के हल्का हो जाला। हाँ कैसे राम राम से क्षमा मांग लेवत रावण तो इतना बड़का युद्ध नहीं होत, इतना लंका नहीं जरत, लंका निमन रहत, सब चीज बन ले ही रहत, लेकिन क्रोध के खातिर हई क्रोधवा जे क्षमा कर देतन राम से मिल जैतन पासी। अथी बोलत हलन लेहू सिया मिलो रघुबर जी से, लेहू न लंका बचाए, हमारे प्रभु बिगड़ल कौने बनाई। तो सब तो चलत ना, उ सब होत तो बहुत अच्छा रहल। और हमके हम जे हमर से कोई लगेला कोई बात में तो बहुत क्षमा करेला। क्षमा करते करते हिया चला अल बेटी, चाहला क्षमा करे के आ जो जो नदमिया कुछ बोल देवेला ओ के चाहला क्षमा मांगे के। क्षमा मांगे के तब बोलेला प्रभु जी हमर सब दया करो, प्रभु जी हमर सब दया करो, हे प्रभु कृपा निधान, प्रभु जी हम सब दया करो। प्रभु जी से भी दया मांगेला। और हम दादी हैं, नानी हैं, सास हैं, कोई हैं, ननद हैं, मैं हमर से कोई क्षमा मांगे तो हम तुरंत लेकर आशीर्वाद दे देव जे नहीं अच्छा बात है क्षमा मांगला, बहुत खुशी भैनी। यही तो है बेटी, चाहे ला मिल मिला के रहे के छोटा या बड़ा सबके चला समान देखे के। यही तो बोला था बेटी, आप तो कुछ कौन सी बोलब जैसी बात इतना जना बतियलन जा, निमन निमन बात बतियलन जा जो समझ जाइब, समझे के निमन निमन लोग समझावे ला, बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम रखेला, कितना जल्दी जल्दी बात मिलेला, जल्दी जल्दी कैसे बोला जे कैसे मजिस्ट्रेट क्षमा करेला। ऐसे है, ऐसे हमने में भी है, चाहे ला मिल के रहे के,
0: मिल के रहे के,
1: कुछ हो तब छोड़ दा क्षमा कर दा। पिते मामा थोड़ा घड़ी के खीस हो जाला, मैं थोड़ा घड़ी के बाद क्षमा हो जाला, खुशी हो जाला, आदमी आनंद लगेला। आले छोड़ा थे बेटी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी और प्रणाम आपको।

0: हेलो,
1: नमस्ते उषा जी।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: ठीक है, ठीक
1: चलिए
0: है।
1: बताइए, कहाँ से बोल
0: हाँ,
1: रही हैं
0: चमा
1: आप?
0: चमा के हम कत्र बोल रहे हैं।
1: कातो बोन से आपका
0: हाँ
1: स्वागत है, चलिए बताइए।
0: हाँ सुना, एक चोर आके घुस के घर में से सब चीज ले ले बोला, एक माफ कर दिला, प्रिजो नहीं गया। 4 बरिस के बाद फिर से चाबी के कॉपी लेके हेल के सब गन्हा ले ले ला। बोला था तब नहीं मिला ला, तब नहीं मिला ला, वो घूमता मासू होवन था, जाने लन था कहाँ छुपा हुई की। बोला था जिंदगी भर जितना दिन जीबा ओकर सोच सोच के रोईबा, बहुत बहुत बहुत दुख के बात है। कोनो चीज रहेला क्षमा, छोटा छोटा बड़ा, लेकिन ये सब बड़ा चोर लोग के नहीं।
1: ये तो है। बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: उषा जी,
0: भाई।
1: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। इंदिरा जी नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं ठीक हूँ। आज का प्रोग्राम तो बहुत ऐसे हैं। अभी मैं अभी अभी ले ली हूँ फोन, फोन अभी ले ली हूँ। मुझे बोल देना क्या बात करना है।
1: और कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि माफी कर देना आपके लिए अच्छा है या फिर दूसरों के लिए?
2: माफी तो अपने से मिलते हैं ना, किसी भी गैस से नहीं मिलते हैं। माफी तो वो सच होते हैं, माफी पूजा
1: जी
2: जी।
1: जी
2: ओके ठीक है
1: बहुत
2: तो
1: बहुत

बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, धन्यवाद, शुभ संध्या आपको। माफी या फिर क्षमा, देखने में ये शब्द बड़ा ही छोटा है, पर इसे करना बहुत बड़ा दिल चाहिए। क्योंकि जब हम बदले की आग में जलते हैं तो सबसे पहले हमारी अपनी ही शांति जलती है। याद रखिए, माफी का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि उस दर्द को अपनी जीवन पर राज न करने देना है। जब आप किसी को माफ कर देते हो ना, तो ये उसके लिए नहीं, ये आपके लिए है, आपके ही मन की शांति के लिए है। और कहा गया है कि जो माफ करता है, जो भूल जाता है, वो आगे बढ़ता है, और जो माफ नहीं कर पाता है वो अपने अतीत में ही रह जाता है, और यही अतीत उसको अंदर ही अंदर खाता है। इसीलिए कर्म ऐसा कीजिए कि यो कि लोग जो हैं आपको याद रखें। कहते हैं ना, कभी आपने सुना है, लोग कहते हैं भुलल चुकर माफ कर दिया, जो हुआ सो हुआ, भूल भूल जाइए, गले मिलकर फिर से दोस्ती कर लेते हैं, क्या पता कल हो ना हो। ये जिंदगी बहुत ही भरी है दोस्तों, बस आप सबसे प्यार बांट कर जिए, किसी से बैर मत कीजिए, नफरत से नहीं प्यार से सबको जीते, क्योंकि अंत में ये पैसा, घर, क्रोध, ओहदा, स्टेटस कुछ भी नहीं रहता, रहता है तो बस आपका कर्म, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, केवल कर्म ही रहता है। और जो भी कुछ किया है, ऊपर जाकर आपको सवाल जवाब करना होगा वहां पर, फिर धरती पर रहकर दूसरों को चोट देना ये आपका कर्तव्य नहीं, ये परमात्मा का कर्तव्य है, आप उन पर छोड़ दीजिए। चलिए इसी के साथ, जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को मैं कहूंगी तहे दिल से धन्यवाद, और सभी को भगवान शक्ति दे ताकि आप लोग जीवन में खुश से जिए, खुशी से जिए, और सभी को माफ कर पाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि परमात्मा से बड़ा और कुछ नहीं। जो भी होता है कारण के लिए होता है, उसी कारण के आस पर आप जिए और सब कुछ भूलकर आगे बढ़िए। जीवन चलने का नाम है, रुकने का नहीं, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।

हमू खंबा लेके हम बड़ी ठोक ठोक के रोईला नहीं जाप ससुरलिया। तो हर पसीन कार्यक्रम में सब कोई के हार्दिक स्वागत करा था जा। और नंबर तो वही है 4028085 पर 92.80.85 पर सक बजा अपन जून पसंदा गीत बाते सक बजा हमनी तक पहुंचावे। और संपर्क करे के फिनो से नंबर बोला था 4028085 पर 92.80.85 पर नहीं तो सक बजा हमनी के मैसेजो भेजे 52.51.7005 पर 52.51.7005 पर सक बजा में साजो भेजे। तो चला अभी खातिर हमनी बरब जा सुनानुयान जी के गावल गीत बजा बोल। और यह गीतवा के मांग कर ले बाते शोभा जी वाकवा से खास तौर पर एगो सहेली खातिर संगतिया खातिर और ऊ है पूजा जी गुडलैंड से और सब संगतिया खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते। और जितना कोई है गीतवा के पसंद करे लंजा तो हर पसंद में चला सुना बजा बोल।

हमनी संगी अभी ढेर कोई जुड़ल हमन जा त क्षमा प्रार्थी हैं जितना कोई के जो हम जो टेलीफोन नहीं सकत हैं ले ढेर कोई बातें त अभी जोन हा अनिता जी थ्रियोले से आल हवन जा और बोलत हवन कि अपन पोती सिया बेटी हवन पूजा और दामाद हवन वेद और पर सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते कि बीच सीमा में पुलिस होके है गीतवा के बड़ी जोन है सरदार के बड़ी कर मन बात है गीतवा सुने के तो चला है गीतवा सुनी रह सक।

तो चला अभी जो है नानी सुकलाल जी हमनी संगे जुड़ल हवन जा और अपन सब लड़का खातिर जा बोलत हवन कि जा बड़ी सागरा लगेला ओकरा तो चला ओकर सब परिवार और सब लड़का खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें और जितना कोई गीतवा के पसंद करे लन जा तो सुनत हवा अभी तोहार पसंद कार्यक्रम साथ निभावत हवन पूजा और सक बजा हमनी के टेलीफोन करे 4028085 पर धैर्य की मांग बातें और जितना कोई के लाइन नहीं मिलता सक बजा हमनी के मिसाजो भेजे 2nd 57 0005 पर

केशवंती जी हवन और बड़ा ही जो हमनी के साथ देवा थवन जा और साथ में बातें मीरा बाई या मौदालबेया से और बिजवंती संपत जी के गावल गीत के मांग कर ले बातें तो चला है गीत हमनी सुनीला सा और है ये गीत सुनीता जी गाँव गोप से हवन और खास तौर पर अपन बहिन विमला जी खातिर गीतवा के मांग कर ले बातें और साथ में आरती जी हवन थ्रियोले से और तीनों बेटी खातिर शिमला रीमा और आनंदी साथ में आश्ले और उकर बही उकर पति सुरेंद्र जे खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें

केशवंती जी हवन और अपन जन्मदिन मनावत हवन जा और है गीतवा खास तौर पर ओकर परिवार देने से ओकरा बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में बातें सुरागिनी जी बॉशेगी से और अनन्या के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं पापा रंजन मामा अर्चना दादा दादी की ओर से उनके पूरे परिवार खास तौर पर रमाया अनाया और सनाया की ओर से आरव और उनके पूरे परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं और जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा वो लोग के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

अपन सब परिवार खातिर गीतवा के मांग ले बाते साथ में बाते स्वीती जी ग्रांबुआ से अपन भाई मानोज के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं।

एमिल फुकेसाइड से सुना था वन भावेश और सब परिवार के लिए खातिर गीतवा के मांग कर ले बातें और खास तौर पर गीता जी पोंफिया से आदित्य आरव और प्यारी जानवी खातिर पति रोहित जी खातिर।

0: शैला जी गान हुए सुदेश से सुना था वंजा और साथ में कमला जी मोताबा से प्यारी आरोही खातिर और त्रिवेणी जी हवा नौकर सब परिवार मोहन परिवार नवीन जी लक्ष्मण जी नवीन लक्ष्मण जी और साथ में बाते उमर पत्नी चित्रा जी वीना रामफुल जी और रश्मि रघुनंदन जी खातिर विजय लक्ष्मण विजय बंदन जी और क्लाविट से सुना था वंजा और रोकर सब परिवार तीनों बहन खातिर
1: दिन भर लहर मारे ला सहलो न जाला लहर के मारे मामा
0: सुना न चिरियांगी जी जो हाँ हमने के सुना था वंजा
2: सुनना पतिया तू हमारा पढ़ना रखिया
0: और एक रेवे संगे हमनी तोहार पसंद कार्यक्रम के अंत तक चला ल हैं जा जितना कोई के लाइन ने मिला क्षमा प्रार्थी हैं सब और जितना कोई जुनकर गीत नहीं चलल बातें सबके नाम जोड़ देनी पूजा का अनुमति दे हमारे देने से सब कोई के नमस्ते स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।

0: ठहर जा मौसी, ठहर जा, उतरे द मौसी, उतरे द, जगह नहीं बा मौसी, विश्वा में जगह नहीं बा।
1: ले ल बाबू ले ल, तू घंटा से खड़ा है, खरे खरे ले ल।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं। पेश आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। समुद्र तटों को कटाव से बचाने, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मैंग्रोव्स की अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव्स दिवस पर ग्रीन पीस अफ्रीका, स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने रिविया डी क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाकर इनके संरक्षण का संदेश दिया। वाकाशो हादसे को आज 6 साल पूरे हुए। 1000 टन से ज्यादा तेल समुद्र में फैलने से मॉरिशस ने अपनी सबसे बड़ी पर्यावरणीय ट्रासदियों में से एक का सामना किया था। आज भी पॉइंट डिस्नी के लोग उस दर्दनाक घटना और समुद्र को बचाने के लिए पूरे देश में उमड़ी अभूतपूर्व एकजुटता को याद करते हैं। भारत में शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। और भारत में मानसून का कहर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति। सबसे गंभीर हालात असम में हैं, जहां बाढ़ से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब समाचार विस्तार से। समुद्र तटों को कटाव से बचाने, समुद्री जैव विविधता को संरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मैंग्रोव अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच इन प्राकृतिक वनों की रक्षा आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव्स दिवस के अवसर पर ग्रीन पीस अफ्रीका, स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने रिविया डी क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। ज़्यादा जानकारी करुणा लालू के साथ।
2: प्लास्टिक की बोतलें, पैकेजिंग और अन्य कचरा। लगभग 30 स्वयंसेवक जो ग्रीन पीस अफ्रीका के सदस्य और रिविया डी क्रियोल के स्थानीय निवासी हैं, मैंग्रोव की सफाई के लिए तैनात हुए। विनय बिचवा ने कहा, मैंग्रोव में झींगे और ऐसे जीव होते हैं जिनसे मछली पकड़ी जा सकती है। प्रदूषण नहीं करना चाहिए। करीब 3 साल के लिए हमें रुकना चाहिए ताकि इनकी संख्या फिर से पहले जैसा हो सके। एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए एक ठोस कदम, जो अनेक पशु पक्षियों और वनस्पतियों के लिए आश्रय स्थल है। नौजवान और ऐसे लोग चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हाथ बटा सके। समंदर पहले जैसा नहीं रहा, बहुत प्रदूषण है। लोगों को जागरूक करने और कदम उठाने के लिए कुछ लोग होने चाहिए। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन मैंग्रोव पर गंभीर प्रभाव डाल रही है। ये तटीय वन लगून के संरक्षण में अत्यंत अहम भूमिका निभाती है। इस दिशा में ग्रीन पीस अफ्रीका ने मॉरिशस में अपना पहला सामुदायिक अभियान के तहत स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से तटीय इको प्रणाली के संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई। उदाहरण के लिए, यदि मछलियां माइक्रोप्लास्टिक खाएंगी और हम मछली तो बीमार हो जाएंगे। यहाँ के मछुआरों ने भी कहा कि मछलियों की संख्या घट गई है। मैंग्रोव्स मछलियों का आश्रय हैं, इनके प्रदूषण से मछलियों को खतरा होगा। ग्रीन पीस अफ्रीका के लिए मॉरिशस में ये पहला अभियान मैंग्रोव और

0: तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की शुरुआत है। संगठन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पूरे द्वीप में संरक्षण संबंधी प्रयासों को और मजबूत करने का कार्य जारी रखेगा।
1: 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन वाकाचो की वो तस्वीर आज भी मॉरिशस की यादों में ताज़ा है। नीले समुद्र पर फैला काला तेल, तटों पर छाई चिंता और प्रकृति को बचाने के लिए सड़कों से लेकर समुद्र तक उमड़ा अभूतपूर्व जनसैलाब, ये केवल एक पर्यावरणीय आपदा नहीं थी बल्कि पूरे देश की एकजुटता की मिसाल भी बनी। आज उस ट्रासिडी के 6 साल बाद पुनदिसने के लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं।
0: पानी पर चमकती धूप के बीच पुनदिसने का सुंदर नजारा। इस बीच ठीक 6 साल पहले यही दृश्य वाकाशो जहाज की विशाल आकृति से विकृत हो गया था। ये मालवाहक जहाज कोरल रीफ पर फंस गया था, जबकि उसके भीतर लगभग 3,900 टन ईंधन तेल भरा हुआ था। ये मॉरिशस की सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी की शुरुआत थी। दिन बीतने के साथ ही समुद्री लहरों के लगातार दबाव से जहाज के ढांचे में दरारें बढ़ती गईं। लगभग 1,000 टन ईंधन तेल लगून में फैल गया, जिससे प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव और समुद्र तट गंभीर रूप से प्रदूषित हो गए। इस त्रासदी ने पूरे मॉरिशस को झकझोर दिया। अपने लगून और आसपास के छोटे द्वीपों को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। मेबर्ग वाटरफ्रंट इस राष्ट्रीय एकजुटता का प्रमुख केंद्र बन गया। राहत और बचाव अभियान का संचालन पुनदिसने से किया गया। 6 वर्ष बाद भी इस पर्यावरणीय आपदा के प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ स्थानों पर प्रकृति ने धीरे धीरे खुद को फिर से संभाल लिया है। आज वाकाशो का एक हिस्सा समुद्र की गहराइयों में पड़ा है। 6 साल बाद समुद्र का पानी फिर से अपने फिरोजी रंग में लौट आया है, लेकिन इस शांत सतह के नीचे उस तेल रिसाव की पीड़ा अभी भी दबी हुई है, जिसने मॉरिशस के इतिहास पर एक दुखद छाप छोड़ी है। इस आपदा ने यह भी साबित किया कि सबसे कठिन समय में मॉरिशस के लोग एकजुट होकर अपने देश और अपने भविष्य की रक्षा के लिए आगे आ सकते हैं।
1: मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पेश किए जाएंगे। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद अब इन दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, जिनका उद्देश्य बजट में घोषित कदमों को लागू करना है। इन दोनों विधेयकों को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉ नवीन राम गुलाम प्रस्तुत करेंगे। इनके तहत 80 से ज्यादा कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। हर साल बजट भाषण के बाद बजट में घोषित उपायों को लागू करने के लिए संसद में कई विधेयक पेश किए जाते हैं। जून के अंत में अप्रोप्रिएशन बिल, जिसे मनी बिल भी कहा जाता है, पारित होने के साथ एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। इस विधेयक को तैयार करने और संसद में पेश करने की प्रक्रिया राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत तय होती है। इसके जरिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी धन जारी करने की अनुमति मिलती है। अब मंगलवार 28 जुलाई को अगला महत्वपूर्ण चरण शुरू होगा। कर व्यवस्था और पब्लिक फाइनेंस से जुड़े बजट उपायों को लागू करने के लिए फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा, जिसके तहत 25 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसमें सेवानिवृत्ति पेंशन पाने की आयु और उसकी राशि तय की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पेंशन में भी बदलाव का प्रावधान है। इसके अलावा चीनी, शराब और बीमा पर कर से जुड़े प्रावधानों के साथ साथ पूर्ण गरीबी की नई परिभाषा भी दी जाएगी। वहीं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल आर्थिक और वित्तीय सुधारों से संबंधित हैं। इसे लागू करने के लिए 58 कानूनों में संशोधन प्रस्तावित हैं। उदाहरण के तौर पर पब्लिक हॉलीडेज एक्ट के तहत यदि कोई आम छुट्टी का दिन रविवार को पड़ता है तो उसके अगले दिन को पब्लिक हॉलीडे माना जाएगा। पब्लिक हेल्थ एक्ट में हर संपत्ति मालिक के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उसकी जगह पर मच्छरों के पनपने की कोई स्थिति न बने, वरना जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। वर्कर्स राइट्स एक्ट के तहत प्रत्येक महिला कर्मचारी को हर महीने एक दिन का मासिक धर्म छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नॉन सिटीजन्स एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस एक्ट में संशोधन के तहत विदेशी छात्रों को वर्क परमिट मिलने पर काम कर

0: करने की अनुमति होगी। ये दोनों विधेयक प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे। मॉरिशस में आलू की फसल का मौसम शुरू हो गया है। हर साल मौसम और जलवायु के अनुसार देश में 13,000 से 16,000 टन तक आलू का उत्पादन होता है। मॉरिशस में सबसे ज्यादा उगाई और खाई जाने वाली किस्म स्पुंता है। स्थानीय उत्पादन से देश की लगभग 60% मांग पूरी होती है। हमारी टीम बगातेल पहुंची, जहां एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मार्केटिंग एसोसिएशन से जुड़े एक खेतीहर 5 एकड़ जमीन में आलू की खेती कर रहे हैं। 3 महीने से ज्यादा की खेती के बाद बगातेल के इस खेत में 1 हफ्ते पहले आलू की खुदाई शुरू हुई है। यहाँ स्पुंता किस्म के आलू 5 बीघा जमीन पर लगाए गए थे। खेतीहर बाली अनथ कहते हैं, AMB के साथ आलू के बीज खरीदे हैं। ये स्थानीय स्पुंता किस्म के हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल फसल बेहतर रहेगी। करीब 8.5 से 9 टन की उम्मीद करते हैं। यहाँ काम कर रहे लगभग 15 मजदूरों में सिर्फ एक ही मॉरिशस का है। बाली अनथ का कहना है कि मजदूरों की कमी आज भी किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो विदेशी कामगार रविवार के दिन काम नहीं करते, उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ। कोई मजदूर नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है। हम खेती करते हैं, अन्य सब्जियों के खेत भी हैं, जैसे टमाटर। फसल करने के लिए कोई नहीं मिलता, उन्हें खेत में ही छोड़ देना पड़ता है। हर साल देश में लगभग 25,000 टन आलू की खपत होती है, जिसमें से 60% स्थानीय उत्पादन से पूरा होता है। कृषि उद्योग मंत्रालय खेती के लिए उपलब्ध जमीन बढ़ाने पर काम कर रहा है, ताकि निकट भविष्य में स्थानीय उत्पादन 80% से ज्यादा तक पहुँच सके और देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। स्वास्थ्य सेवाएं अब क्वीन विक्टोरिया के लोगों के दरवाजे तक पहुंच रही हैं। गांव में शुरू किए गए नए हेल्थ पॉइंट का उद्देश्य स्थानीय निवासियों, खासकर बुजुर्गों को बिना लंबी यात्रा किए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। क्वीन विक्टोरिया के निवासियों को अब इलाज के लिए कई किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र में एक हेल्थ पॉइंट शुरू किया गया है। हमें लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा, हम यहाँ खून निकालने आ सकते हैं। वृद्ध लोगों को फ्लाक का अस्पताल जाना पड़ता था और वहाँ से कोंस्टांस का अस्पताल सवारी मिलना आसान नहीं है। खून की जांच, डॉक्टर से परामर्श और नियमित स्वास्थ्य जांच जैसी कई सेवाएं अब यहीं उपलब्ध हैं। फिलहाल ये हेल्थ पॉइंट सप्ताह में एक दिन कार्यरत रहेगा। मंत्री अनिल बेचू कहते हैं,
1: यहाँ पर यातायात का समस्या है, आने जाने के लिए भी समस्या है, ट्रांसपोर्ट का समस्या है। तो यहाँ के वृद्ध जो लोग हैं, हमेशा हमसे कहा करते थे कि अगर यहाँ पर एक ऐसा संस्था, स्वास्थ्य का संस्था हो, जहाँ पर कुछ ना कुछ अपने जो बीमारी है उसके लिए कुछ इलाज हो सके। किसी को बुखार है या ब्लड टेस्ट करना होता है या कोई ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं होती है, तो ये लोग यहीं पर इनकी इलाज हो सकती है। रात में जाकर प्रतिदिन यहाँ पर डॉक्टर भी यहाँ रहेगा। आजकल डॉक्टरों की कमी है सरकार अस्पतालों में, तो इसलिए एक दिन कर रहे हैं, फिर से बाद में 5 दिन हो जाएगा।
0: ये स्थानीय पहल क्वीन विक्टोरिया के निवासियों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को और आसान बनाएगी। विदेशी खबरों में, भारत में शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच सरकार ने प्रश्न पत्र लीक जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए नया विधेयक भी संसद में पेश करने का फैसला किया है। ज्यादा जानकारी आस्था गोविंद तामन के साथ।
2: प्रहलाद जोशी को भारत का नया केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा चल रहे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल के वर्ष

0: क्षेत्रों में शिक्षा सेक्टर में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और वे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगी। इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए एक नया विधेयक संसद में पेश करने का फैसला किया है। प्रस्तावित पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 में एग्जाम पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के मामले में सख्त सजा और अधिक आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े संस्थानों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी तय करने का प्रस्ताव है। बिल में ये भी प्रावधान है कि एग्जाम पेपर लीक से जुड़े मामलों में दायर अपीलों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए ताकि ऐसे मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित हो सके। सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाना है।
1: भारत में मॉनसून अब राहत नहीं बल्कि कई इलाकों में आफत बनता जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। सबसे गंभीर हालात असम में है, जहां बाढ़ से 66 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अब भी इस आपदा से प्रभावित हैं। राहत और बचाव अभियान जारी हैं, जबकि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
0: भारत में इस समय मानसून की तेज बारिश कई राज्यों के लिए मुश्किलें लेकर आई है। भारी वर्षा के कारण बाढ़, जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर हालात पूर्वोत्तर के राज्य असम में हैं, जहां बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है। राज्य के कई इलाके अब भी पानी में डूब गए हैं और 6,50,000 से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। बाढ़ से सड़कों, पुलों और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों तक भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सहायता पहुंचा रहे हैं। असम के अलावा भारत के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में भी भारी वर्षा का असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सड़क संपर्क भी बाधित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, नदी और निचले इलाकों से दूर रहने तथा केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की अपील की है।
1: नोल तूफान आज तड़के दक्षिणी चीन के तट से टकराया। ये अपने साथ तेज हवाएं और भारी बारिश लेकर आया। इसके कारण ग्वांगडोंग प्रांत में लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है और दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। और अब मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
2: टापू के करीब विकसित होने वाले बादल आज रात को हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि आज रात को पूर्व एवं सेंट्रल प्लाटो पर बादल घिरे रहेंगे और जहां तहां बारिश होगी। कल सुबह और दिन के दौरान भी मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दोपहर में बादल घिर आएंगे दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर। तापमान सेंट्रल प्लाटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं और कल सुबह 3 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। साथ में पश्चिमी एवं दक्षिणी लगूनों में भी कल सुबह से न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्यास्त 5:50 पर, कल सूर्योदय 6:42 पर।

0: और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें शिव का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: हैमलेट रोड मुसलमान सेंट एंड्रे में 78

साल की 78-year-old की श्रीमती चुरामनी दिगम, पैदाश नाम लक्ष्मण और जो चुरामनी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे राकेश दिगम के घर हमलेट रोड मोसलमों सैतौंधे से उठाकर मोसलमों सैतौंधे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। 92 साल की 92-year-old की श्रीमती ज्ञानमती गुरा, पैदाश नाम कालीचरण और जो ज्ञान से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले शांड स्ट्रीट बोबासें रहती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे लाशापेल अदौ तेली एनसन्स रॉयल रोड बोबासें से उठाकर रिपाई सैं पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 11:30 AM। रॉयल रोड शामुनी में 55 साल के 55-year-old के श्री जितेंद्र भिका, जो राजेश से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे भिका कौशिक के घर रॉयल रोड शामुनी से उठाकर कौगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 1 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

सेबी की ओर से एक दो जरूरी विज्ञप्तियां सुनिए। सेबी सोलफेरिनो नंबर 5 के इन इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करता है। CWA, IBL पंपिंग स्टेशन, एक्सपुल्ट्री वुटन और आसपास के इलाकों के ग्राहकों को सूचित करता है कि बुधवार 29 जुलाई 2026 के प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी की ओर से एक दूसरी विज्ञप्ति सुनिए। तमागें के इन इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है जो मोसलमों कॉलस एवेन्यू जकारोंदास के इलाकों में रहते हैं, उनको सूचित किया जाता है कि मंगलवार 28 जुलाई 2026 को प्रातःकाल के 8:30 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी दो विज्ञप्तियां सेबी की ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजली प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: भजली प्रभु का नाम, सभी सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं श्रोताओं इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण हमें यह विश्वास देता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे दूर कर सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का।

भजले प्रभु का नाम, इसे आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, जीवन की असली शक्ति हमारे पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों में छिपी होती है। जब मन प्रभु के नाम से जुड़ जाता है, तब हर कठिन राह भी आसान लगने लगती है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। वैसे श्रोताओं, शक्ति बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर जागती है। भक्ति उस शक्ति को पहचानने का मार्ग है और आध्यात्मिकता उसे सही दिशा देने का प्रकाश। तो आइए कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम ये भी कहेंगे आपसे, अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचाने और प्रेम, सेवा तथा सकारात्मक सोच के साथ जीवन को सार्थक भी बनाए।
1: भगवान का दर्शन जीवन को मोक्ष देता है। ईश्वर का दास, पुजारी या भक्त भगवान से दर्शन पाने की इच्छा, करुणा व विनती के साथ भक्ति में लीन होकर अधिकार पूर्वक क्यों न करें।

श्रोताओ, शक्ति वह प्रकाश है जो भय को विश्वास में और निराशा को आशा में बदल देता है। तो आइए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, तहारत ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकिजगी यानी तहारत ईमान का निस्व है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है।

वज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है फिर नमाज अदा करता है तो उसके वो तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो इस नमाज और अगली नमाज के दरमियान हुए हों, बशर्त ये कि कबीरा गुनाहों से बचता रहे। एक दूसरी रिवायत में है कि जब बंदा वज़ू करता है तो उसके चेहरे, हाथों और पाँव से पानी के आखिरी कतरे के साथ गुनाह भी झड़ जाते हैं। सामीन मोहतरम, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। खुदा से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और जो बीमार हैं उन्हें कामिल शिफा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं दुआया कलिमात के साथ आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजराना पेश करते हैं। इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

रात के 9:10 हो गए बा। सभी प्यारे श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार करे जा। आज है रविवार के दिन और वो रात्रि में ता ठंडा गिराता और ओषा तोहर संगे रात की 11 ले और तोहर पसंद के गाने नंबर वा घुमावा और 402-8085 और SMS करब जा 5251705 पर। और तुहर खातिर भोजपुरी तरका मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के तो अवश्य नंबर वा जो है मिला ला और झट से मांग कर जा। आज का पहल का गीत सुना जा

0: के 9:11 हो गल बा और भाई बहन लोगन तोहरा याद बाते
1: भोजपुरी तड़का
0: की कार्यक्रम तोहर खातिर और अगला गीत जोन बा कविता खातिर और वो हमनी के सुनता वाकवा से गाना मांगत अवंजा अपने भाई बहन खातिर और पूरे सनातन परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:20 हो गल बा रविवार के रात्रि में तक गर्मा गर्म गीतवन के आनंद उठावा जा अपन व्यस्त जीवन के भी थोड़ा सुन संगीत से सजा दे के चाहिला है ना अपन रात्रि के और रंगीन कर। और अगला गीत जोन बा देवरानी जी खातिर और ये बखत हमने के सुनता क्यों पिप से किशोर खिमिया के गावल गीत जमल कुडू।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:30 बा और भाई बहन लोगन गली गली शोर बा भोजपुरी के दौर बा ई दौर के कबो नए तोरिया जा ई मातृभाषा के संजो के हमेशा रखिया जा अपन पुरखन के सपना के साकार कर जा। तो चल अगला गीत मीरा भाई जी खातिर जोन हमनी के सुनता मोर आलबिया से गाना मांगा तवन जा पाई दिया परिवार खातिर और दरमिया परिवार खातिर और सभी बच्चे लोग खातिर बरका मामा सुदेश भोजू के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:42 हो गल बाब और श्रोता लोग, भोजपुरी जगत के जोन सितारा आज दुनिया में नए हवन जा, पर ओलोक के मधुर आवाज हर दम गूंजते रही, आवाज अमर हो गए और भोजपुरी तड़का के जरिए वो कलाकार लोगन की श्रद्धा के फूल से सम्मान दिलसा। तो चला अगला गीत सुरेवी जी खातिर जोन हमने के सुना था वाकवा से गाना मांगा था वंजा दीदी ललिता कुशल फैमिली आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रिया दिया श्रेष्ठा और पूरे राम रतन परिवार खातिर और जितना कोई की ये बखत हमने के सुनाता। तो चला अगला गीत एगो मेडले सुदेश भोजू के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: नतिया के बेटा बड़ी मार मारेला तो चलो छोटा लोग ई महीना में त शादी के भरमार बाती। हर रविवार के दिन ही नहीं पर सप्ताह के अन्य दिन में भी शादी रहेला और इत खुशी के मौका है सभी परिवार के बीच में प्यार एकता बरेला और ईश्वर हमेशा सब नया जोड़ी के अपन आशीष दे। और यहाँ पर ये गाना चलावा जा माचो के गावल गीत और ये गाना अमृता जी खातिर जो हमने के सुना था ओकुले से।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10:10 हो गल बा और पिछे वे जे साहिबिया के रहने वाली कविता जी जन हमने के सुनत आई बखत और गाना मांगत अवंजा पति देवानंद खातिर बेटियां जोन है नीलम और पूजा और बेटा अतिश और खास कर हिरवा परिवार खातिर

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 10:15 होने को है और अगला गीत ललिता कुशल खातिर और उरहिला त्रियोले और बखत ई कार्यक्रम सुनाता गाना मांगा तवंजा बहन सुदेवी ज्ञानी दीदी चौथी दीदी दादी पर भावती आत्माराम भैया और खासकर सुखलाल मौसी खातिर

और श्रोतागण, 30 जुलाई से श्रावण मास शुरू हुए, ये पूरा एक महीना तक चली। ये पावन अवसर पर ईश्वर की पूजा और वेद पाठन भी होला। यही महीना में रक्षाबंधन में मनावल जाला। अपन मन के साफ रखा और बुद्धि से बुद्धि के शुद्ध भी रखा। तो चल अगला गीत सुने जा। सुनीता नंगो के गावल गीत चमेली चमेली।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के 10:24 और हियाँ परी रतन जी जन हम के सुनता गाँवे से गाना मांगा तवन जापन खातिर और आफिस जी जन रही लाला वेनिया एकर खातिर गाना चलावब जा और रजन लक्ष्मण जी जन रही लाला फ्लोआ और गाना मांगा तवन जा पत्नी माला बेटी प्रार्थना प्रगति बहन मानती भगिनी जो हैं तुलसी और पूरे लक्ष्मण परिवार खातिर और खासकर विश्वानी डुमन जी खातिर जो न रहिला वाकवा एकर खातिर गाना चलावब जा और खासकर गाना एकर बहन बहन इंदिरा शारदा सहेली जोनबा नीला प्रतिभा शोभा और खासकर गीता गजाधर खातिर किशोर खिमिया के गावल गीत बेस्ट सॉन्ग 2025 भोजपुरी कैटेगरी तो चला ये गाना सुना और झूमिया

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का।
2: चलो श्रोता लोगन, आशा करत हैं कि खूब गमत होता, परिवार के साथ सुंदर समय बीतत बाते, अपन समय के ऐसे नहीं गवावा। एक बार समय चल गल तो कबो वापस नहीं आई, अपन समय के बचावा और ही आगे बढ़ जा। और रात के 10:31 हो गल बा और यहाँ पर ही गाना चलावब जा। सभी जगमोहन परिवार खातिर और खासकर सभी संगीत प्रेमियों खातिर और मान खातिर, तो चल एक गीत सुना जा, नीरज गुप्त मधु के गावल गीत।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:52 हो गल बा और श्रोतालोक प्रोग्राम के अंत तक हमने चलाल है सा। काल से एक नया सप्ताह शुरू होता तो आप लोगन के बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करत हैं। अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दी है और चिंता के छोरा आज्ञा द नमस्ते और शुभ रात्रि।
2: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: भोजपुरी तड़का।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। फिर से एक बार गणेश आ गई हैं आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और हमारा प्यार भरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। उनकी जो मिठास है ना, आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए उन अमर गीतों का लुफ्त उठाते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

0: हर गीत के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी की मुस्कान, किसी की मोहब्बत और किसी की कहानी। और आज उन सब कहानियों को फिर से जीते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। पुराने गीत बिल्कुल सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें महसूस किए जाते हैं। हर सुर दिल को छू जाता है और हर लफ्ज एक नई याद दे जाता है। स्वागत तो हमने आप सभी लोगों का कर लिया और बस उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से महसूस करेंगे आज।
1: कहा आपका ये बजा ही सही,

आज की रात होगी यादों के नाम, उन गीतों के नाम जो हर जेनरेशन को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। तो चाय की एक प्याली ले लीजिए और शुरू कीजिए यादों का सफर सुनहरे पल के साथ, रेडियो मॉरिशस पर गिनिशा के साथ।

मोहम्मद रफी की आवाज, लता मंगेशकर की मिठास, किशोर दा की शरारत और मुकेश दा का दर्द, सब कुछ मिलेगा आज सुनहरे पल में। बिल्कुल जी, यादों के इस पितारे को खोलने का वक्त आ गया है। हर गाना आपको ले जाएगा बचपन, जवानी और जिंदगी की हसीन लम्हों तक। तो बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

पुरानी फिल्में, पुराने गीत और वो सुकून जो आज भी दिल को छू लेता है, इसी खूबसूरत सफर में हम सफर बनिए सुनहरे पल के साथ। वैसे कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाते हैं और आज उन्हीं यादों को फिर से जिंदा करेंगे इन खूबसूरत गीतों के साथ।

हर सुर में है मोहब्बत, हर लफ्ज में है जज्बात, और हर गीत में है सुनहरी कहानी। बस इसीलिए तो है सुनहरे पल। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपका साथ देने आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, ताकि आपकी यादों का खजाना फिर से हम खोल दें और आपकी होंठों पर मुस्कुराहट ले आए। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम।

टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाता है कि हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू। बिल्कुल जी, जाने का वक्त जो हो गया है, तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।